नमस्कार श्रोताओं, मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूँ हमारे आज की प्रातःकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज वार रविवार दिनांक 21 जून 2026 का दिन है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारी भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना से। फिर हम रुख करेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की गाथा में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा श्रोताओं हमारा प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद कहानी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति के साथ में, यानी कि मेरे साथ में। श्रोताओं, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर, जिसमें आप जानेंगे उनके जीवन परिचय को। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा गांधी जी के जीवन से जुड़ा विशेष कार्यक्रम मेरे सपनों का भारत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी। श्रोताओं, फिर हम रुक करेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे नए नए व्यंजनों के बारे में और इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9 बजे। श्रोताओं, जैसा कि आपको कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बताई रही हूँ, तो इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति। श्रोताओं, फिर 10 से 1 बजे तक होगी मनोरंजन की पूरी भरमार फिल्म संगीत लोक संगीत के साथ में, जिसमें आप सुनेंगे नए पुराने फिल्म संगीत और हमारी लोक परंपरा से जुड़े राजस्थानी गीतों को। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारे आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती है। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं?

0: प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुंद, आप एक कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है? नाना अंजलि बुंद हूँ था का? अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा। होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
5: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: संघर्ष के बीच एक एहसास जो उन्हें मजबूत बनाता रहा, यह महापुरुषों की अनकही प्रेम।

साथियों, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, समर्पण से बड़ा कोई कर्म नहीं। यही जीवन की सच्ची राह है। जहाँ सेवा का भाव होता है, वहीं समर्पण का प्रकाश होता है और वहीं सफलता का वास होता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए महापुरुष के जीवन परिचय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया अंजलि कि एक डॉक्टर केवल रोगों का इलाज नहीं करता बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को स्वस्थ दिशा भी दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी है भारत रत्न से सम्मानित महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। श्रोता साथियों, उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुआ और इसी कारण भारत में हर वर्ष यानी कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, बिधान चंद्र रॉय भारत के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने चिकित्सा, समाज सेवा और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। वे कुशल चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक दूरदर्शी राजनेता थे। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस उनके सम्मान में मनाया जाता है, जैसा कि आपने बताया। और जैसा कि हम जान पाए आपके माध्यम से कि उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही एक ही दिन आते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ। उनके पिता प्रकाश चंद्र राय सरकारी सेवा में थे और माता अघोर कामिनी देवी समाज सेवा में रुचि रखती थी। बचपन से ही उनमें अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना के संस्कार विकसित हुए थे।
1: जी जी।
0: उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था लेकिन शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देते थे। यही कारण था श्रोता साथियों कि बालक विधान ने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई को जारी रखा।
1: जी हाँ जागृति जी, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की। बचपन से ही वे मेधावी, परिश्रमी और अनुशासित छात्र थे। गणित और विज्ञान विषयों में उनकी विशेष रुचि थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डॉक्टर रॉय ने डॉक्टर बनने के बाद चिकित्सा सेवा को केवल पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम माना। आगे की पढ़ाई के लिए जागृति जी वे इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने बहुत कम समय में MRCP और FRCS जैसी प्रतिष्ठित उपलब्धियां प्राप्त की जो उस समय अत्यंत कठिन मानी जाती थी।
0: बिल्कुल अंजलि, उनका एक प्रिय सिद्धांत था कि जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में आए उसे पूरी शक्ति और निष्ठा से करो।
1: बिल्कुल,
0: यही वाक्य उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया। श्रोता साथियों, उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसा कि अंजलि आपने बताया वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ उन्होंने कठिन परिश्रम और असाधारण प्रतिभा के बल पर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में उच्च योग्यता प्राप्त की।
1: बिल्कुल,
0: उनकी उपलब्धियाँ इतनी उत्कृष्ट थी कि वे उस समय के सबसे प्रतिभाशाली भारतीय चिकित्सकों में गिने जाने लगे। श्रोताओं सोचिए, एक युवा, सीमित साधन, विदेशी भूमि और अनगिनत चुनौतियाँ, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो कठिनाइयाँ रास्ता नहीं रोक पाती है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ति जी, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि भारत लौटने के बाद उन्होंने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। वे गरीबों का उपचार अत्यंत संवेदनशीलता और समर्पण के साथ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय चिकित्सा परिषद और चिकित्सा संगठनों के विकास में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय योगदान भी दिए।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर विधान चंद्र रॉय केवल चिकित्सक ही नहीं थे जागृति जी, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े। उन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए अपना योगदान भी दिया। इसलिए कहा जाता है कि वे महात्मा गांधी के निजी चिकित्सकों में से एक थे।
0: बिल्कुल,
1: उनका विश्वास था कि स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण को एक दूसरे का पूरक माना।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भारत लौटने के बाद डॉक्टर राय ने चिकित्सा सेवा को अपना मिशन बना लिया था और वे गरीबों का निस्वार्थ उपचार करते थे। उनके लिए मरीज केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानवता का स्वरूप थे।
1: बिल्कुल,
0: उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि लोग उन्हें केवल डॉक्टर नहीं बल्कि जीवनदाता मानने लगे थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। भारतीय चिकित्सा समुदाय को मजबूत बनाने के लिए श्रोता साथी, उन्होंने कई संस्थाओं के विकास में भूमिका निभाई और चिकित्सा व्यवस्था को संगठित करने में योगदान दिया।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटा सा संवाद है अंजलि रोगी और डॉक्टर राय के बीच में जो हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: जैसे कि रोगी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, तब डॉक्टर राय ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, पहले स्वस्थ हो जाइए, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को लेकर बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने रोगी और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के बीच के संवाद को जाना, यही बात करें राजनीतिक जीवन की, तो श्रोता साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर रॉय ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे पश्चिमी बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 1950 से लेकर 1962 तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल ने विकास की नई दिशा भी प्राप्त की थी।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन पर विशेष ध्यान दिया। उनके प्रयासों से पश्चिमी बंगाल में अनेक महत्वपूर्ण नगरों और संस्थाओं

0: का विकास हुआ, वे एक दूरदर्शी प्रशासक थे जिन्होंने विभाजन के बाद की कठिन परिस्थितियों में राज्य को स्थिरता और विकास की राह पर आगे बढ़ाया।
1: जी हाँ अंजलि, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राय केवल चिकित्सक ही नहीं थे बल्कि देशभक्त भी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर देश सेवा का कार्य किया। श्रोता साथियों, वे महात्मा गांधी जी के बहुत निकट सहयोगी में गिने जाते थे और उनके चिकित्सक के रूप में भी कार्य करते थे।
0: बिल्कुल,
1: उनका मानना था अंजलि कि स्वस्थ नागरिक ही स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। देश की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राय ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। 1948 में वे पश्चिम बंगाल के प्रीमियर बने और बाद में स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हमने पहले भी बताया था, उन्होंने 1962 तक इस पद पर रहकर राज्य के विकास को नई दिशा दी। उस समय श्रोता साथी विभाजन के कारण लाखों शरणार्थी, बेरोजगारी और अनेक सामाजिक समस्याएं सामने थी, लेकिन डॉक्टर राय ने चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। श्रोता साथियों, कहा गया है कि सच्चा नेता तो वही होता है जो संकट में रास्ता दिखाए, और डॉक्टर विधान चंद्र राय भी ऐसे ही नेता थे। अंजलि, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने नए नगरों के विकास की योजना बनाई, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में दुर्गापुर, कल्याणी और विधाननगर जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ, जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की। और हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आधारभूत संरचना पर भी उन्होंने बहुत विशेष ध्यान दिया। उनकी दूरदर्शिता के कारण पश्चिम बंगाल स्वतंत्रता के बाद तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा।
0: जी हाँ जागृति जी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की असाधारण सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी चिकित्सा, सामाजिक और राजनीतिक योगदान की राष्ट्रीय मान्यता थी। उनकी स्मृति में बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया गया, जो चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: डॉक्टर रॉय अत्यंत सरल, अनुशासित और सेवा भावी व्यक्ति थे। उनके जीवन में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, मानवता और सर्वोच्च मूल्य थे। वे मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उनके उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज के प्रति उनके योगदान से मापी जानी चाहिए। उनकी कार्यशैली में दृढ़ता और संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन था, चाहे मरीजों का उपचार हो, राज्य का प्रशासन हो या राष्ट्र निर्माण का कार्य, उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। कहना चाहेंगे कि 1 जुलाई 1962 को अपने 80वें जन्मदिन के दिन ही डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का निधन हो गया।
1: बिल्कुल,
0: यह एक दुर्लभ संयोग था कि जिस दिन उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा उसी दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कहा।
1: बिल्कुल,
0: उनके निधन से भारत ने एक महान चिकित्सक, दूरदर्शी नेता और मानवतावादी व्यक्ति को खो दिया।
1: जी हाँ अंजलि, जैसा कि 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ही मनाया जाता है, और हमारे श्रोता साथियों से हमारी मुलाकात 1 जुलाई को नहीं हो पाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसीलिए आज ही हमने हमारे श्रोता साथियों को बता दिया कि आखिर हम क्यों मनाते हैं डॉक्टर दिवस। श्रोता साथियों, ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति को समर्पित है, क्योंकि उनका जन्म और निधन दोनों इसी दिन हुए थे, जैसा कि अभी आपने बताया। और ये दिवस डॉक्टरों की सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है।
0: जी जी,
1: डॉक्टर राय का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है अंजलि, जैसे कि कठिन परिस्थितियां सफलता को नहीं रोक सकती, शिक्षा और परिश्रम सफलता की कुंजी होती है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, नेतृत्व का उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए, स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये सारी सीख हमें उनके जीवन से मिलती है। डॉक्टर विधान चंद्र राय केवल एक डॉक्टर नहीं थे बल्कि वे मानवता की सेवा का जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने अस्पतालों में मरीजों का दर्द भी समझा और मुख्यमंत्री के रूप में जनता की समस्याओं का समाधान भी किया।
0: जी हाँ,
1: उनका जीवन हमें बताता है श्रोता साथियों कि महानता पद या प्रतिष्ठा से नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए किए गए कार्यों से प्राप्त होती है।
0: जी हाँ,
1: जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को नया जीवन देता है अंजलि, जब कोई युवा समाज सेवा का संकल्प लेता है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तब डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रेरणा जीवित हो उठती है। तो श्रोता साथियों, हम भी उनके आदर्शों को अपनाएं और ऐसा जीवन जिए जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। कहा गया है कि सेवा का हो जीवन आधार, यही है डॉक्टर विधान चंद्र राय का सच्चा उपहार।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातें हो गई हैं, और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। बस अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। यदि हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके तो वही डॉक्टर राय के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय भले ही आज हमारे बीच नहीं अंजलि, लेकिन उनकी सेवा, उनके विचार और उनकी प्रेरणा आज भी लाखों दिलों में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाती है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए श्रोता साथियों, जीवन वही महान है जो मानवता के काम आए। सेवा, समर्पण और करुणा से ही सच्चा सम्मान हमें मिलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातें ढेर सारी हुई। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए महापुरुषों की प्रेम गाथा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जून का तीसरा रविवार हम फादर्स डे मनाते हैं, तो आज 21 जून है और आज ही के दिन हम फादर्स डे मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं आपको फादर्स डे स्पेशल कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी श्रोता साथियों, और जानेंगे कि हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व होता है। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि आप सभी को बताया था कि हर रविवार को मैं प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि जून महीने का तीसरा रविवार, जो कि हम फादर्स डे स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पिता के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व होता है। साथियों, जब भी जीवन में प्रेम, त्याग, संघर्ष और जिम्मेदारी की बात होती है, तब सबसे पहले माता पिता का चेहरा सामने आता है। माँ जहाँ अपने स्नेह और ममता से घर को स्वर्ग बनाती है, वहीं पिता अपने परिश्रम, त्याग और संघर्ष से उस घर की नींव को मजबूत करते हैं। पिता के बारे में कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि पिता वो व्यक्ति है जो स्वयं कठिनाइयों को सहकर अपने बच्चों के लिए खुशियों का रास्ता बनाते हैं। फादर्स डे केवल एक दिन नहीं, बल्कि पिता के त्याग और समर्पण को याद करने का अवसर है। ये दिन हमें सोचने का मौका देता है कि हमारे जीवन में पिता का कितना बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक है जीवन में पिता का महत्व। ये कहानी उन सभी पिताओं को समर्पित है श्रोता साथियों, जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपने पिता के त्याग को तब समझ पाया जब जीवन ने उसे जिम्मेदारियों का वास्तविक अर्थ समझाया। कहानी शुरू होती है दोस्तों इस तरह से कि एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम था रवि। मोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, मैं भले ही खेतों में मेहनत करूं, लेकिन मेरा बेटा कलम से अपनी पहचान बनाएगा। रवि बचपन से ही होशियार था दोस्तों। स्कूल में उसके अच्छे अंक आते थे, गांव के शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते थे। ये सुनकर मोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी। खेती से जितनी आय होती, उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। फिर भी मोहन ने कभी रवि की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। जब गाँव के बच्चे खेतों में काम करते थे, तब रवि पढ़ाई करता था। उसके पीछे उसके पिता की मेहनत छिपी हुई थी। हर सुबह 4 बजे उठकर मोहन खेतों में चला जाता। गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई भी मौसम हो, उसे रोक नहीं पाता था। उसके हाथों में पड़े छाले और चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्ष की कहानी कहते थे दोस्तों। लेकिन रवि धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा था। अब उसके सपने गाँव से बड़े हो चुके थे। अब वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था। दोस्तों, मोहन ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। गांव के कई लोगों ने कहा कि इतना पैसा पढ़ाई में क्यों लगा रहे हो, खेती संभालने दो उसे। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मेरा बेटा वही जाएगा जहां उसके सपने उसे ले जाएंगे। साथियों, कुछ समय बाद रवि शहर के कॉलेज में दाखिल हो गया। गांव छोड़ते समय मोहन की आंखों में खुशी थी। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा कभी मेहनत का रास्ता मत छोड़ना। रवि ने सिर हिलाया और शहर चला गया। शहर पहुंचकर रवि की दुनिया ही बदल गई दोस्तों। यहाँ बड़े बड़े मॉल थे, महंगे मोबाइल थे, शानदार कपड़े थे और आधुनिक जीवन शैली थी। धीरे धीरे रवि अपने गांव और अपने पिता को लेकर संकोच महसूस करने लगा। जब उसके दोस्त अपने पिता के बड़े व्यवसाय और नौकरियों की बात करते, तब रवि चुप हो जाता। उसे ऐसा लगता था कि उसका जो किसान पिता है, वो दूसरों से कम है। एक दिन कॉलेज में पेरेंट्स डे का आयोजन हुआ। सभी छात्राओं के माता पिता आए। मोहन भी गाँव से रवि से मिलने आया। उसने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना था, लेकिन वो भी पुराना था दोस्तों। उसके पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। जब मोहन कॉलेज पहुंचा, तब रवि अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। मोहन खुशी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रवि को शर्म महसूस हुई। उसने अपने दोस्तों से परिचय करवाने के बजाय जल्दी जल्दी पिता को हॉस्टल के कमरे में ले गया। मोहन ने बेटे की आंखों में झिझक देख ली थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना पूछा, बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है ना? रवि ने कहा, हाँ सब ठीक है। मोहन शाम को वापस गाँव लौट गया। रास्ते भर उसका मन भारी रहा, लेकिन उसने अपने दर्द को किसी को भी नहीं बताया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में रवि का चयन एक प्रतिष्ठित कंपनी के इंटरव्यू के लिए हुआ। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू दूसरे शहर में था और वहां जाने के लिए पैसे चाहिए थे। रवि ने पिता को फोन किया। मोहन ने कहा, चिंता मत कर बेटा, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था आसान नहीं थी। घर में पैसे नहीं थे, फसल भी इस बार खराब हो गई थी। मोहन ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। अंत में उसने अपनी सबसे प्रिय बैलों की जोड़ी बेच दी। साथियों, वे बैल उसके लिए केवल जानवर नहीं थे, बल्कि वर्षों के साथी थे। उन्हें बेचते समय उसकी आंखें नम थी।
लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि बेटा अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ पाएगा। कुछ दिनों बाद पैसे रवि के खाते में पहुंच गए। रवि इंटरव्यू देने के लिए चला गया। उसने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया और नौकरी उसे मिल गई। साथ ही जब उसने ये खबर पिता को दी तब मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। नौकरी मिलने के बाद रवि महानगर चला गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। महंगा फ्लैट, अच्छी सैलरी, नई कार, सब कुछ उसके पास था, लेकिन व्यस्तता के कारण उसने गांव जाना कम कर दिया। पहले हर सप्ताह फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब धीरे धीरे वो भी कम हो गया था। मोहन हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे के फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन फोन अक्सर नहीं आता। फिर भी वो गांव वालों से गर्व से कहता, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, केवल गर्व था। साथियों, एक दिन रवि अपने ऑफिस में बैठा था, तभी गांव से फोन आया। फोन पड़ोसी का था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, रवि बेटा जल्दी गांव आ जाओ, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। रवि के हाथ कांपने लगे, वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तब मोहन बेड पर लेटा हुआ था। चेहरा कमजोर था, लेकिन बेटे को देखते ही मुस्कुराया। रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसने पिता का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये वही हाथ है जिसने उसे चलना सिखाया था। ये वही हाथ है जिसने खेतों में मेहनत करके उसका भविष्य बनाया था। ये वही हाथ है जिसने अपनी जरूरत को छोड़कर उसकी हर जरूरत को पूरी की थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इलाज में देरी इसीलिए हुई क्योंकि मोहन पैसे बचाना चाहता था। वह अपनी बीमारी पर खर्च करने के बजाय पैसे बेटे के भविष्य के लिए जमा कर रहा था। श्रोताओं, रवि स्तब्ध रह गया। उसे ये भी पता चला कि उसकी नौकरी के इंटरव्यू के लिए पैसे जुटाने के लिए पिता ने बेल बेच दिए थे, और कई बार उन्होंने खुद के लिए नई चप्पल तक भी नहीं खरीदी। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे अपने सारे व्यवहार याद आने लगे। वो दिन याद आया जब उसे पिता पर शर्म आई थी। वो समय याद आया जब उसने महीनों फोन नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि सफलता की दौड़ में उसने उस इंसान को सबसे ज्यादा दुख दिया जिसने उसे सफलता तक पहुंचाया था। साथियों, अगली सुबह मोहन ने रवि को पास बुलाया। धीरे से बोला, बेटा जीवन में कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। रवि फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मैंने बहुत गलतियां की हैं। मोहन मुस्कुराया और कहा कि गलती हर इंसान करता है, लेकिन जो अपनी गलती पहचान लेता है वही सच्चा इंसान होता है। ये शब्द रवि के दिल में हमेशा के लिए श्रोता साथियों बस गए। पिता के स्वस्थ होने के बाद रवि ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र बनवाया। उसका नाम रखा मोहन ज्ञान केंद्र। उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के सामने रवि ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। मेरी सफलता मेरी नहीं, मेरे पिता के त्याग की सफलता है। मोहन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। साथ ही कहानी हमें शिक्षा देती है कि पिता अक्सर अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करते। वे मैं तुमसे प्यार करता हूँ कम कहते हैं, लेकिन अपने हर त्याग से ये साबित करते हैं कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वे अपनी इच्छाओं का बलिदान देकर बच्चों के सपनों को पंख देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें पिता की डांट दिखाई देती है, जब बड़े होते हैं तब हमें उस डांट के पीछे छिपी चिंता भी दिखाई देती है। जब सफल होते हैं तब समझ आता है कि हमारी सफलता की नींव पिता के त्याग पर खड़ी है। यदि हमारे पिता आज हमारे साथ है श्रोता साथ, तो उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पिता को याद तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें गले नहीं लगा सकते। फादर्स डे पर कोई महंगा उपहार जरूरी नहीं है श्रोता साथियों, एक सच्चा धन्यवाद पिताजी और थोड़ा सा समय ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि पिता वो दीपक है जो स्वयं जलकर अपने बच्चों का जीवन रोशन करते हैं। उनका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उनका सम्मान अवश्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फादर्स डे स्पेशल। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और मैंने गीत से पहले फादर्स डे स्पेशल कहानी आपको सुनाई थी मोहन और रवि के बारे में, कि किस तरह से मोहन ने अपने बेटे के लिए अपने बेल तक को भी बेच दिया था ताकि वो आगे बढ़ सके। हम कह सकते हैं दोस्तों, पिता हमारे जीवन की वो छाव है श्रोता साथियों, जो जीवन में कोई भी हमें वो छाव नहीं दे सकता। वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम उन्हें ही भूल जाते हैं, जैसे कि रवि भूल गया था। तो श्रोता साथियों, मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास पिता है तो उनका सम्मान कीजिए, उनसे बात करिए, उन्हें पूछिए कि आपको क्या जरूरत है, क्योंकि पिता कभी अपनी बातों को दिल से नहीं कहते, वो अंदर ही अंदर बातों को सोचते रहते हैं। अगर आप भी एक बेटे हैं और आप अपने पिता से बातचीत करना चाहते हैं तो आप आज ही बैठकर अपने पिताजी से बात करिए। और मैं आपको कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पिता परिवार का वो स्तंभ है जिस पर पूरी घर की जिम्मेदारियां टिकी होती है। वे अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। पिता अपने व्यवहार और अनुभव से बच्चों को समय का महत्व, मेहनत का मूल्य और जिम्मेदारियों को निभाने की कला सिखाते हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाते हैं, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना सिखाते हैं। मेहनत को सफलता की कुंजी किस तरह से माननी है ये भी हमें पिता से ही पता चलता है। तो श्रोता साथियों, फादर्स डे केवल उपहार देने का दिन नहीं, ये दिन अपने पिता के संघर्ष को समझने, उनके त्याग को सम्मान देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। हो सकता है कि आपके पिता बहुत कम बोलते हो, लेकिन उनका हर संघर्ष, हर चिंता और हर प्रयास आपके उज्जवल भविष्य के लिए होता है। जब भी जीवन में सफलता मिले, उस सफलता के पीछे खड़े उस व्यक्ति को मत भूलिए जिसने अपने सपनों से पहले आपके सपनों को महत्व दिया है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचकर पीछे जरूर देखिएगा। वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जिसने खुद धूप में चलकर आपके लिए छाव बनाई थी, वो व्यक्ति आपके पिता है। इस फादर्स डे पर केवल इतना कह दीजिए श्रोता साथियों, पिताजी आपके त्याग और प्रेम के लिए धन्यवाद। यकीन मानिए श्रोता साथियों, इस शब्द उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार होंगे, क्योंकि कहा गया है कि पिता है जीवन का सम्मान, उनसे ही है हमारी पहचान, उनके चरणों का करो सत्कार, यही है सच्चा फादर्स डे उपहार। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आज की कहानी और आज की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर, बात नन्हे दिलों की को लेकर। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी आपकी अंजलि दीदी हाजिर होती है तो कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी प्यारी कहानियों को लेकर आती है। तो आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रेरणादायक कहानियां अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करें, फिर हमारी प्यारी सी बातों की शुरुआत करें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि आज कार्यक्रम के माध्यम से मैं नई प्यारी सी कहानियों को लेकर हाजिर हो गई हूँ और आज हम देख रहे हैं कि 21 जून का दिन है और आप सभी को पता है कि 21 जून का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही खास है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और पिता दिवस मना रहे हैं। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि योग हमें स्वस्थ शरीर और शांत मन का संदेश देता है, संगीत हमारे जीवन में खुशियों से रंग भरता है और पिता दिवस हमें उन पिताओं के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है जो हमारे जीवन की मजबूत नींव होते हैं। तो तैयार हो जाइए श्रोता साथियों, प्रेरणा, आनंद और भावनाओं से भरी तीन सुंदर कहानियों को सुनने के लिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हम एक छोटी सी कहानी योगी आरव की। जी हाँ श्रोता साथियों, ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि आरव एक चंचल और होशियार लड़का था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसे मोबाइल पर गेम खेलना, टीवी देखना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह सुबह देर से उठता था, व्यायाम नहीं करता और अपने स्वास्थ्य का तो बच्चों बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। धीरे धीरे इसका असर उसके शरीर पर दिखने लगा। वह जल्दी थक जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। उसकी माँ उसे रोज समझाती कि बेटा सुबह जल्दी उठो और थोड़ा व्यायाम करो, लेकिन आरव ठहरा कि उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, यानी कि आज के दिन सभी बच्चों को योग के महत्व के बारे में बताया गया। स्कूल में योग शिक्षक आए, उन्होंने बच्चों को समझाया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है बल्कि यह मन को शांत और मजबूत भी बनाता है। बच्चों शुरू में तो आरव को यह बहुत उबाऊ लगा। उसने सोचा कि योग करना बुजुर्गों का काम है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके कई दोस्त बड़े उत्साह से योग सीख रहे हैं तो उसने भी कोशिश करना शुरू कर दिया। अगले दिन वह पहली बार उस स्कूल के योग शिविर में गया। वहां उसने ताड़ासन, वृषासन, भुजंगासन और प्राणायाम सीखा। शुरू शुरू में उसे कठिनाई हुई, कभी उसका संतुलन बिगड़ जाता तो कभी वह जल्दी थक जाता, लेकिन योग शिक्षक ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। आरव ने बच्चों तय किया कि वह रोज सुबह आधा घंटा योग करेगा। धीरे धीरे उसे योग में आनंद आने लगा और कुछ ही सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि उसकी थकान कम हो रही है और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा था। अब वह सुबह जल्दी उठता, योग करता और फिर पढ़ाई करता। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। जो विषय उसे कठिन लगते थे वे अब आसान लगने लगे। उसके अध्यापक भी उसकी प्रगति देखकर खुश हो गए। कुछ महीनों बाद स्कूल में खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। पहले आरव खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार उसने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। नियमित योग प्राणायाम के कारण उसकी सहन शक्ति बढ़ गई थी। उसने पूरी लगन से दौड़ लगाई और दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार लेते समय उसे अपने योग शिक्षक की बातें याद आ गई कि योग शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। बच्चों अब आरव अपने दोस्तों को भी योग के लिए प्रेरित करता था। उसने घर के पास के पार्क में बच्चों का एक छोटा योग समूह भी बना लिया। हर सुबह वे सब मिलकर योग करते और फिर खेलते। योग दिवस के अवसर पर स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा जाता जहाँ आरव को मंच पर अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। उसने सभी बच्चों को बताया कि कैसे योग ने उनका जीवन बदल दिया। उसकी बात सुनकर सभी ने जोरदार तालियां बजाई। उस दिन आरव को समझ में आया कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। इसलिए हम सभी को भी अपने जीवन में योग के महत्व को समझ कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये तो हमारी प्यारी सी कहानी रही योग को लेकर। आगे हम सुनेंगे संगीत दिवस और पिता के महत्व को लेकर एक प्यारी सी कहानी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए बच्चों सुनते हैं इस गीत को।

사람 남자.

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई योग के महत्व को लेकर, यहीं अब सुनते हैं संगीत के महत्व को लेकर प्यारी सी कहानी। बच्चों, इस कहानी का विषय है सुरों को जादू। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि रिया नाम की एक बच्ची थी जिसे गाना गाना बहुत पसंद था। जब भी वह गाती उसके घर का माहौल खुशियों से भर जाता। एक दिन स्कूल में संगीत दिवस मनाया जाना था। रिया को मंच पर गाने का अवसर मिला, लेकिन वो बच्चों बहुत घबरा रही थी। उसकी दादी ने कहा कि संगीत डर नहीं, खुशी बांटने का माध्यम है, दिल से गाओ। कार्यक्रम के दिन रिया ने हिम्मत जुटाई और मधुर गीत गाया। उसका गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के बाद उसे खूब तालियां मिली। तब बच्चों, रिया को समझ में आया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने की शक्ति भी रखता है। हम देखते हैं ना कि जब भी हमारा मन खराब होता है या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है तो हम भी संगीत सुनते हैं। जब हम हमारे मन पसंद के गीत संगीत सुनते हैं तो हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। ये कहानी हमें सीख देती है कि संगीत मन को आनंद देता है और लोगों को प्रेम के बंधन से जोड़ता है। तो यह थी हमारी प्यारी सी कहानी सुरों का जादू। यही अगली कहानी हमारी है पापा का अनमोल उपहार। जी हाँ, आज हम बच्चों फादर्स डे भी मना रहे हैं और यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पापा हम सभी की जान होते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि रोहन सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार की आय बहुत अधिक नहीं थी लेकिन पापा हमेशा कोशिश करते थे कि घर में किसी चीज की कमी न रहे। रोहन अपने दोस्तों को नई नई साइकिल चलाने देता था। उनकी भी इच्छा थी कि उनके पास एक सुंदर साइकिल हो। उसने कई बार अपने पापा से कहा लेकिन हर बार पापा मुस्कुराकर कहते, बेटा थोड़ा और इंतजार करो। रोहन को लगता कि शायद पापा उसकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में पिता दिवस पर निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विषय था मेरे पापा मेरे हीरो। रोहन सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या लिखे। उसी दौरान उसने एक बात पर ध्यान दिया। उसके पापा रोज सुबह जल्दी उठते, ऑफिस जाते, देर शाम लौटते और फिर भी घर के कामों में माँ

की मदद करते। एक दिन उसने देखा कि पापा की पुरानी घड़ी खराब हो चुकी है। माँ ने उनसे नई घड़ी लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिन बाद पिता दिवस आया। सुबह सुबह पापा घर आए और एक बड़ा डिब्बा रोहन के सामने रख दिया। जब रोहन ने डिब्बा खोला तो उसमें नई चमचमाती साइकिल थी। रोहन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी उसे माँ से पता चला कि पापा कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे थे। उन्होंने अपनी नई घड़ी और कई दूसरी जरूरतें टाल दी ताकि रोहन की इच्छा पूरी कर सके। यह सुनकर रोहन की आंखों में बच्चों आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि पिता का प्यार हमेशा शब्दों में नहीं दिखता, कई बार वह त्याग, मेहनत और जिम्मेदारी के रूप में दिखाई देता है। उसने पिता दिवस पर अपने पापा के लिए एक कार्ड बनाया और उसमें लिखा कि पापा, आपने मुझे साइकिल से भी बड़ा उपहार दिया है। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण में छिपा होता है। कार्ड पढ़कर पापा की आंखें भी भर आई। उस दिन रोहन ने महसूस किया कि दुनिया में पिता जैसा कोई साथी नहीं होता। वे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए चुपचाप संघर्ष करते रहते हैं। इसके बाद रोहन ने पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू की। वह जानता था कि अपने पिता की मेहनत का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छा इंसान बनना। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पिता हमें कुछ देने के लिए, हमें बड़ा बनाने के लिए, हमें अच्छे संस्कार देने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। वे हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने देते, तो हमें भी हमारे पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना है। ये कहानी हमें बहुत ही प्यारे से सीख देती है कि पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। उनके त्याग, मेहनत और स्नेह का सम्मान करना हर बच्चे का कर्तव्य है। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी पापा का अनमोल उपहार। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ बच्चों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बूंद, हूँ था का?
3: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बूंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, नींद चैन का त्याग कर आंखें खोलनी पड़ती है। मेहनत करना आसान नहीं, पूरी जिंदगी झुकनी पड़ती है। दिन रात को एक बनाकर मेहनत से सफलता मिलती है, माली के खून पसीने से ही बाग में कली खिलती है। जिस मेहनत को करने से आज हम थरथर कांपते हैं, उसी मेहनत और तपस्या में सफलता का रास्ता मिलता है। इस दृढ़ता को आदत हमें बनाना होगा। छू सकते हैं हम हर मंजिल, हमें खुद को यह याद दिलाना होगा। हार जीत की सोच रखे बिन मेहनत अब हमें करनी है। लोगों की क्यों बातें सुने जब जंग हमें खुद से लड़नी है। कोशिश हमारी काया है और मेहनत हमारी परछाई है। लोगों की इन बातों से नहीं, खुद से अब हमारी लड़ाई है। कठिन राहें हैं कांटों वाली, किंतु मंजिल में फूल मिलेंगे। परिश्रम हमारा कठिन है, किंतु परिणाम हमें अनुकूल मिलेंगे। परिश्रम की गर्मी में खुद को हमें तपाना होगा। छू सकते हैं हम हर मंजिल, हमें खुद को यह याद दिलाना होगा। दुनिया गीत गाएगी अब की बार देखना, चुक रहे ना कोशिश में कुछ, एक ऐसी पारी हमें खेलनी होगी। ये कठिन परिश्रम हमारा है, मेहनत अवश्य रंग लाएगी। रात अमावस्या की है काली, पर फिर दिवाली आएगी। अभी जमीन का कण भर है, आगे पूरा आसमान है। बस चलते जाना है हमको, मंजिल हमारे पास है। इस कीमती जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना होगा। छू सकते हैं हम हर मंजिल, खुद को हमें यह याद दिलाना होगा।
1: रहे जो तेरे कद से इरादे।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागट रेडियो 90.8 एफएम पर। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं। तो श्रोता साथियों, आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि जी।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: मैम जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं, और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान जो है हर रविवार को आता है, और इसी बीच कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ भी जुड़ते हैं, और उनसे हम जानते हैं कि उनका बचपन जो है वो किस कदर बीता, शिक्षा का क्षेत्र उनका कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि उनका जो जीवन है उनमें क्या चुनौतियाँ आई और किस तरीके से उन्होंने उस चुनौती को पार किया। तो मैम सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी अंजलि जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
0: जी,
1: मेरा नाम स्नेहलता स्वर्णकार है। मैं राजकीय वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी से हूँ, और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा में अपनी सेवाएं दे रही हूँ।
0: जी,
1: यहाँ पर मैं लगभग 2019 से आई हूँ, तो लगभग मुझे 5 वर्ष हो चुके हैं। और इससे पहले मैं खे डाबरा जो माही डैम रोड पर स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर पोस्टेड थी।
0: जी बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आप एक शिक्षिका हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अलग होता है, हमारे ऊपर बच्चों के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी भी होती है। तो मैम जैसा कि बातें तो इस विषय पर हम ढेर सारी करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी शिक्षिका के पद पर रहकर किस तरीके से बच्चों के भविष्य को संवार रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ पर मेरा ससुराल है।
0: जी,
1: तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा पड़ता है, कानोड़ नाम है उसका।
0: जी बिल्कुल,
1: कानोड़ में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो है वह एक शिक्षक है।
0: जी बिल्कुल,
1: और हम 4 बहनें हैं, और बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा, अभावों में बीता है।
0: जी बिल्कुल,
1: और बहुत संघर्ष कह सकती हूँ कि करके और आज ये स्थान मैंने प्राप्त किया है।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो बचपन है वो अभावों में बीता और आपने बहुत सारा संघर्ष किया, तो मैं आपके उस संघर्ष को जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो संघर्ष में होता है, लेकिन बहुत सी बार वो हार मान जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संघर्ष से लड़कर जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया

0: है वो अपने जीवन में एक नई पहचान बनाता है। और जैसा कि आपने अपने जीवन में एक नई पहचान बनाई है, तो मैं आपके संघर्षों को जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस तरीके से अभावों में बिता, आपके माता पिता क्या करते थे, क्या उस समय की स्थिति रहा करती थी।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो परिवार होते थे वहाँ परिवार में संख्या बहुत सदस्यों की ज्यादा होती थी।
0: जी जी।
1: उसी प्रकार मेरे दादाजी थे, उनके 6 पुत्र और 1 पुत्री थी, तो हम कह सकते हैं कि वो सब बच्चों को एक जैसी सुविधाएं नहीं दे पाए।
0: जी जी।
1: तो मेरे पापा का संघर्ष शुरू हुआ, फिर उस समय मैं ये कह सकती हूँ कि पुत्र की चाह में उनकी भी 4 पुत्रियां हुई।
0: जी जी।
1: और हाँ, बाद में उन्होंने उन सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पर उनको इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मम्मी मेरी उस समय सिर्फ 5वीं पास थी, हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने भी सिलाई बुनाई का कार्य सीखा। अब 4 पुत्रियों को पढ़ाना लिखाना, या तो एक ऑप्शन था कि वो उनको 14 साल, 15 साल, 16 साल के होके विवाह करवा दे और अपने अपने घर भेज दे।
0: जी जी।
1: दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि वो उनको पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दे, ट्रेनिंग करवाए, जॉब में भेजे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।
0: जी जी, बिल्कुल।
1: उन्होंने सारी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, बकायदा ट्रेनिंग भी कराई।
0: जी जी।
1: और उसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किए, स्वयं की इच्छाओं को समाप्त किया, और मम्मी ने हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी, पापा ने संघर्ष किया, और उसका परिणाम यह है कि आज हम 4 बहनों में से 3 जो है वह राजकीय सेवा में है।
0: जी जी।
1: और सबसे छोटी वाली बहन है, उसने भी अभी MA BEd किया है, वह भी ट्रेनिंग करी और अभी कंपटीशन एग्जाम की वह भी तैयारी कर रही है।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, हम कह सकते हैं कि संघर्ष में बिता हुआ जो जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आगे उसका जो परिणाम है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है।
1: जी,
0: तो मैम, जैसा कि हम आपके बचपन के बारे में जान पाए, यही अब मैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ रहा, आपने किस तरीके की पढ़ाई कर रखी है।
1: जी जी। अंजलि जी, मैं आपको बता देती हूँ कि कानोर था, वहाँ पर एक ही प्राइवेट कॉलेज था, तो शिक्षा तो मैंने अपनी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक राजकीय विद्यालय से ही उत्तीर्ण करी है।
0: जी जी।
1: हमने कोई ट्यूशन नहीं लिया, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद कॉलेज की बात थी, तो कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी।
0: जी जी।
1: तो पापा उस समय दे नहीं पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट जो थे उस तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो हमने वहीं से प्राप्त करी, उसके बाद भी पढ़ाई हमने निरंतर जारी रखी।
0: जी हाँ।
1: फिर हमने BEd की ट्रेनिंग करी, और वह भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ही करी, पढ़ाई करके उसको हासिल किया, और उसके बाद बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन क्लासेस के, फिर आगे एग्जाम की तैयारी करी।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में हमने अभी जाना, हम यही मैं आपकी हॉबीज जानना चाहूंगी, क्या बचपन से आप एक शिक्षक ही बनना चाहते थे?
1: हाँ, एक्चुअली क्लास में भी जब हम फ्री पीरियड में खेलते थी लड़के आपस में, घर पे भी हम खेलते थे, तो बस एक टीचर वाला गेम ही मुझे सबसे अच्छा लगता था, और मेरे मन में यही था।
0: जी जी।
1: कि मैं एक शिक्षिका बनूं।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपका बचपन से ही ये सपना था कि आप एक शिक्षिका बने, और आप अभी उस पद पर कार्य भी कर रही हैं, लेकिन मैम, हम देखते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: जी जी। मुझे बच्चों को पढ़ाने के अलावा कविताएं लिखना पसंद है।
0: जी जी।
1: उसके अलावा मैं छोटी थी तब डांस क्लास भी चलाती थी, बच्चों को डांस भी सिखाती थी।
0: जी बिल्कुल।
1: और इस तरीके से मेरे और भी शौक रहे हैं, जैसे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि आप कविताएं लिखती हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी कविता सुनना चाहूंगी, ताकि हमारे जो श्रोता साथी हैं उनको भी कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और कुछ एक जागरूकता की जो चीजें होती हैं वो भी उन्हें समझ में आ जाए।
1: जी बिल्कुल। मैंने ऐसे तो बहुत विषयों पर अलग अलग कविताएं लिखी है, पर अभी बेटी पर समर्पित आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: गुड़िया तुम कितनी प्यारी हो, खिलती सी कलियों की क्यारी हो, हे याद मुझे वो दिन प्यारा, जब तुम आई मेरे जीवन में, बदल गया था हर दिन मेरा, थी उथल पुथल अब हर पल में, सोचा था एक किताब लिखूंगी, वह सफर जो तेरे साथ शुरू हुआ, उसका हर एहसास लिखूंगी, वह क्षण ही कितने सुंदर थे, सच कहूँ तो वो रोमांचक थे, हर क्षण में उतार चढ़ाव चले, हर पल में कई बदलाव चले, तेरी किलकारियों से शुरू में थोड़ा प्यार हुआ, पर जब वो रोके नहीं रुकती, तब तो सोचो जीना दुश्वार हुआ। एक खौफ सा फैल गया मन में, आतंक सा मचा दिया घर में। जब कोई बच्चा नया नया आता है घर में, थोड़े दिन तो बहुत प्यार आता है, पर अचानक से जब वो बहुत ज्यादा रोता है तो सब डर जाते हैं, अरे रे रे।
0: जी बिल्कुल।
1: जब तुम झूले में सोती थी, सब शश करते रहते थे, दबे दबे कदमों से वह तुम्हारे पास से गुजरते थे, अब तुम मुझे पहचानती थी, तुम्हारी माहू में यह जानती थी, सच कहूँ मैं भी तो अब जान पाई, यह माँ शब्द की परिभाषा पहचान पाई, तुझको सीने से लगाकर स्वर्ग का सुख पाती थी मैं, अब यह घड़ी भी बदल रही थी, तुम दिन दिन चंचल प्यारी और भी प्यारी एक सुंदर रूप में निखर रही थी। जब बच्चा खेलने लग जाता है तब की यह है, दादा दादी नाना नानी सबकी राज दुलारी बन, इठला इठला कर मचल रही थी, तुतली तुतली बोली तेरी जंकृत करती मन के तार, तेरी हर अठखेली पर में मन ही मन रही नजर उतार। कहते हैं माँ की नजर सबसे पहले लगती है,
0: जी बिल्कुल,
1: तो माँ सबसे पहले नजर उतार लेती है। ओ मेरी प्यारी बिटिया, मेरे जीवन की खुशियाँ है तू, तू ही मेरा प्यार, वादा मैं तुझसे करती हूँ, हर पल में तेरे संग रहूंगी, चाहे कोई भी बाधा आए तेरे जीवन से दूर करूंगी, अब तो एक दुआ है रब से, खुशियों का नाता ना टूटे तेरे जीवन से, ओ मेरी प्यारी बिटिया।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपकी भी एक छोटी सी प्यारी बेटियां है, और उसी माध्यम से हम सभी लोग भी अपनी जो बेटियां होती हैं उनके जीवन के महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जो बेटी होती है वो अपने मम्मी पापा के साथ साथ जो जिस घर में भी वो शादी करके जाती है उन दोनों ही घर को वो बहुत अच्छे से संभालती है। तो जैसा कि आपने बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाई है, और भी कोई ऐसी कविता है जो हमारे जो श्रोता साथी हैं उनको प्यारा सा संदेश दे पाए, तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
1: जी जी, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। एक हरित राजस्थान कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है।
0: जी जी।
1: उसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे को 5 पौधारोपण का जिम्मेदारी दी गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: प्रत्येक शिक्षक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है, और इसके अंतर्गत हमने अभी लगभग 1200 से भी ज्यादा पौधे जो है हमारे विद्यालय में लगाए हैं।
0: जी जी।
1: अभी लक्ष्य और भी है, तो उसी मतलब कड़ी में मैंने एक कविता लिखी है कि पर्यावरण से संबंधित है।
0: जी बिल्कुल।
1: वह मैं आपको भी सुनाती हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: पीपल की गुहार मेरी कविता का शीर्षक है। रुको अभी करो इंतजार, लौट आने दो पहले गिलहरियों को वापस, आ जाने दो पक्षियों को अपने घोंसले के करीब, सूरज ढलते ही हो जाएगा सक्षम उल्लू भी खाना लाने में, उतर जाएगी शाम तक चींटियां भी पत्तों से, करो इंतजार। जब एक वृक्ष को काटते हैं तो उसके अंतर्मन की जो पीड़ा होती है,
0: जी जी,
1: तो उसी पीड़ा को एक वृक्ष कैसे उजागर कर रहा है, वो कहता है कि ईश्वर के लिए बंद करो मशीनें, फेंकने को कहो तुरंत इनसे कुल्हाड़ी और हथियार, क्योंकि मनुष्यों की तरह क्रूर हृदय नहीं पाया है, मनुष्यों की तरह क्रूर हृदय नहीं पाया है परिंदों ने, आसान नहीं है उनके लिए संभालना खुद को, देख उजड़ा अपना घरबार, देख उजड़ा अपना घरबार।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने बहुत ही प्यारी कविता लिखी है कि किस तरीके से पर्यावरण का जो संरक्षण है वो हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के समय की ये बहुत ज्यादा जरूरत बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा हो गया है, प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि इसकी वजह से लोगों को अनेक समस्याएं हो रही हैं। आजकल हम ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुन रहे हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुने थे। तो हम श्रोता साथियों से यही आशा करेंगे कि जो प्यारी सी कविताएं आपके माध्यम से लिखी गई हैं जन जागरूकता के लिए, वो उन्हें अवश्य पसंद आई होगी। तो मैम, अब हम आपके जीवन की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो जीवन है वो शिक्षिका का है, और आपके पास एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया भी है। तो हम देखते हैं कि एक माँ के पास ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह उन्हें अवश्य करना होता है। हम देखते हैं कि एक शिक्षिका के तौर पर एक शिक्षक की भूमिका होती है बच्चों के भविष्य को संवारना, उसी के साथ उनका एक और फर्ज होता है अपने घर परिवार को संभालना। उनके घर परिवार में उनके साथ दो दो चीजें जुड़ती हैं, एक माता पिता का परिवार और एक सास ससुर का परिवार। उसमें एक और चीज एड हो जाती है, बच्चों की परवरिश। तो मैम, आप ये जिम्मेदारियाँ कैसे निभाती हैं? आप इन जिम्मेदारियों से थक हार कर कभी हताश, निराश, चिड़चिड़ापन, इस तरीके का व्यवहार क्या आपके अंदर कभी आया, या अगर आया भी तो किस तरीके से आपने इससे निपटने की कोशिश की?
1: जी बिल्कुल, आपने अभी ऐसा प्रश्न किया है जो वर्तमान में बिल्कुल सटीक बैठता है मुझ पर।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अंजलि जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई माँ ये कहती है कि मैंने ये सब कुछ कर लिया तो वो बिल्कुल गलत होगा। एक माँ जो है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, ये मैं मानती हूँ। पर हाँ, अगर सबका सहयोग हो, उसमें हमारे परिवार वाले हैं,
0: जी जी,
1: विद्यालय में भी जैसे हमारे संस्था प्रधान महोदय जी है, जैसे मैं अभी जाती हूँ तो वहाँ पे हमारे संस्था प्रधान महोदय जी है, वह भी बहुत ही सकारात्मकता से भरे हुए और बहुत ही कह सकती हूँ सपोर्ट करने वाले, मतलब इस तरीके से है, तो उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिलाई। घर परिवार ने भी मुझे, मेरे सास ससुर जी, मेरे पति ने भी बहुत हिम्मत दिलाई। और एक अपने अंदर भी सकारात्मकता होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: समस्याएं आती है पर हम समस्याओं से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल।
1: किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि समस्या से भागना ही समस्या की शुरुआत है।
0: जी बिल्कुल मैम।
1: तो समस्याएं आती है पर समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। तो उस तरीके से हमने भी समस्याओं का समाधान निकाला है। अभी बच्ची को संभालने के लिए एक ऐसी केयर टेकर की व्यवस्था करी है जो जरूरतमंद भी थी।
0: जी जी।
1: मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ इस तरीके से, तो मैं उसको जानती थी तो मैंने उसको कहा कि आप यह काम कीजिए तो आपको मदद भी मिल जाएगी और मुझे भी मदद मिल जाएगी। तो वह भी तैयार हो गई।
0: जी बिल्कुल।
1: वो अच्छे से अपनी माँ की तरह जैसे बच्चे को संभालती है, वैसे मैं विद्यालय से जाती हूँ तब तक वो थोड़ी देर के लिए उसको संभालती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और फिर विद्यालय में हम तन मन धन से अपना कार्य मतलब समर्पित भाव से कर सकते हैं। और जब ये विद्यालय का कार्य हो जाता है फिर हम घर जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं। मैं एक इंसान हूँ इसलिए इंसान का स्वभाव है कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी सब तरह का। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कभी चिड़चिड़ापन नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल।
1: कभी कभी कोई भी इंसान हो तो उसको कभी हो जाता है, पर हमको खुद को संभालना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक पल से ही दूसरे पल में स्वयं को संभालना पड़ता है कि नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: होता है, ऐसा होता है, पर उसका समाधान निकाल के तुरंत वापस से आगे बढ़ जाना। और बच्चे तो हैं हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम अपनी इच्छा से उनको दुनिया में लाए हैं, तो उस बच्चे को संभालना हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम उस पर नहीं चिढ़ सकते। अगर कोई माँ अपने बच्चे पे चिढ़ती है तो उसको भी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपना गुस्सा छोटे बच्चे पर कभी ना निकालें।
0: जी बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप उसको लेकर आए हो तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको अच्छी परवरिश दो।
0: जी बिल्कुल मैम।
1: और मैं भी इस तरीके से संपूर्ण जिम्मेदारियां संभालती हूँ।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक माँ होने के नाते हमारी ढेर सारी जिम्मेदारी होती है। और हम कह सकते हैं कि एक माँ जब अपने घर परिवार को सारी चीजों को संभालती है तो उनकी एक दिन पहले से ही तैयारी रहती है, या हम कह सकते हैं कि वो पहले से ही सोच लेती है कि मैं ये कार्य करने जा रही हूँ तो इसका निर्वाह मुझे किस किस तरीके से करना है। उनकी समय सीमा की जो पाबंदी होती है वो उन्हें अच्छे से ध्यान में होती है। हम देखते हैं कि उसी अनुसार जब वो अपने बच्चों का पालन पोषण, घर परिवार का ध्यान और अपनी जो अलग जिम्मेदारियां होती हैं जहां वो कार्य कर रही हैं वो अच्छी तरीके से निभा पाती है। तो मैम, अंत में आप हमारी जो माताएं हैं जो शिक्षिका के तौर पर भी हैं या कहीं और जाकर अपने कार्य कर रही हैं, उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं उनके कार्य जो है वह व्यवस्थित होते हैं।
0: जी जी।
1: आप भी अपनी योजना बनाकर कोई भी कार्य करें। आप ये मत सोचिए कि किसी मकान का काम चल रहा है तो उसकी ही योजना बनेगी, या कोई बहुत बड़ा काम है उसकी ही योजना बनेगी। आपकी जो दिनचर्या है उसकी भी आप योजना बनाकर काम करिए।
0: जी हाँ।
1: समय को मैनेज करिए कि किस प्रकार से आपको इस समय में ये कार्य पूरा करना है, इस समय में ये कार्य पूरा करना है।
0: जी जी।
1: तो आप अगले ही दिन से देखेंगे कि वाह यार, वास्तव में ये कार्य तो इतना आसान था और मैं फालतू में इसका तनाव ले रही थी।
0: जी बिल्कुल।
1: रात को आप सब्जी काट कर रख दीजिए, सुबह की तैयारी कर दीजिए। जैसे ही सवेरे आप उठेंगे तो जैसे ही आपको सब्जी कटी हुई मिलेगी तो फटाफट से आपका खाना भी बन जाएगा
0: जी,
1: फिर आप बच्चों को भी समय दे पाएंगे। और भी दूसरे जो कार्य है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था सब्जी का।
0: जी जी बिल्कुल मैम,
1: दूसरे कार्यों की भी आप योजना बनाइए ताकि आप आराम से उन कार्यों को एक कड़ी दर कड़ी मतलब आराम से निपटा सके।
0: जी बिल्कुल,
1: बस समय का आप मैनेजमेंट करिए, यही मैं कहना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल मैम, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
1: धन्यवाद आपका।
0: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आज के अतिथि जुड़े हुए थे, उनके जीवन के ढेर सारे अनुभव को हमने जाना और बहुत सी ऐसी चीजों को जाना जो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से मैं विदा लेना चाहूंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है, यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए थे।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कशिश, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हमने जाना था सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में।
1: बिल्कुल,
0: इसी बीच रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हम जानेंगे सबके गांधी में रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, समाज में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के दो पहलू होते हैं। समाज की वर्तमान दशा में से यह परिवर्तन कुछ को मिटा देता है और कुछ नई रचनाएं कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि सन 1967 में फ्रांस में विद्यार्थियों का एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के कशिश अनुभव के अंत में उसके अग्रणियों में से एक ने लिखा कि क्रांति कुछ नष्ट कर देती है और कुछ जमीन से नया उगा देती है। समाज की कई परंपराओं, कई मूल्यों और कई संबंधों और कई ढांचों में बदलाव आता है।
1: जी हाँ।
0: तब उसे क्रांति कहते हैं। अधिकांश क्रांतिकारी ये जानते हैं श्रोता साथियों के समाज में से क्या मिटाना है। किसी को गुलामी मिटानी है, किसी को शोषण दूर करना है, तो किसी को असमानता हटानी है।
1: बिल्कुल,
0: अधिकांश क्रांतिकारी क्रांति के नकारात्मक पहलू को लेकर जितने स्पष्ट होते हैं कशिश, उतने क्रांति के द्वारा नया क्या करना है इस बारे में स्पष्ट नहीं होते, जिससे बहुत सी क्रांतियां अधूरी रह जाती है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सी क्रांतियों के परिणाम मूल धारणा से उल्टे ही आते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथियों, फिर क्रांति के नेता एक व्यवस्था को तोड़ डालने के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको जब तक वह व्यवस्था टूट नहीं जाती तब तक कुछ और तो सोचता ही नहीं।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी इन दोनों मामलों में अपवाद स्वरूप क्रांतिकारी नेता थे अंजलि जी। उनके मन में समाज व्यवस्था को बदलने से लेकर जैसी कई स्पष्टता थी, उतनी ही स्पष्टता नई व्यवस्था खड़ी करने को लेकर भी थी।
0: जी जी।
1: साथियों, फिर वे पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही नई व्यवस्था की बुनियाद भी निर्मित करते जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि गांधी जी को देश की उस काल की दशा बदलनी थी, उनको गरीबी दूर करनी थी, बेकारी दूर करनी थी, असमानता दूर करनी थी और गंदगी दूर करनी थी, साथ ही रोग भी दूर करने थे और अज्ञान दूर करना था। साथियों, ये तमाम दूर करने में देश की गुलामी आड़े आती थी, अतः सबसे पहले उनको गुलामी दूर करनी थी। इस तरह संपूर्ण व्यवस्था को दूर करके वे एक नई व्यवस्था खड़ी करना चाहते थे।
0: जी हाँ,
1: वे उसे अहिंसक समाज व्यवस्था कहते थे और इस नई व्यवस्था के बारे में भी उनके मन में स्पष्ट कल्पना थी। हम जानते हैं श्रोता साथियों कि इस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए वे तब तक रुकने को तैयार नहीं थे जब तक कि गुलामी न हट जाए।
0: जी,
1: बल्कि उनके पास ऐसा कार्यक्रम भी था कि जो देश से गुलामी को हटा भी सके और नई अहिंसक समाज की नींव भी रख सके।
0: बिल्कुल कशिश, इस कार्यक्रम को उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम नाम दिया था। उनको ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि यदि पूरा देश रचनात्मक कार्यक्रमों को शत प्रतिशत पूरा करता है तो उसके परिणाम स्वरूप देश स्वतंत्रता भोग सकेगा।
1: बिल्कुल,
0: स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों से अलग ऐसा कोई सविनय अवज्ञा कार्यक्रम नहीं करने पड़ेंगे। गांधी जी इस प्रकार एक तरफ आदर्श के सपने देख रहे थे, वैसे दूसरी तरफ उनको देश की वास्तविक दशा की पूरी जानकारी नहीं थी।
1: जी हाँ।
0: इसलिए वे एक के बाद एक रचनात्मक कार्यक्रम देते जाते थे, इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए संस्थाएं खड़ी करते जाते थे। इन संस्थाओं को खड़ा करने के लिए वे लोगों की तलाश करते जाते थे और उन्हें वह काम सौंपते जाते थे। इस प्रकार अपना आदर्श व्यवहार की ठोस भूमिका पर खड़ा करने के लिए भी वे लोगों की तलाश करते जाते थे और उन्हें वह काम सौंपते जाते थे। इस प्रकार श्रोता साथियों, उनका आदर्श व्यवहार की ठोस भूमि पर खड़ा था कि वह धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा था।
1: बिल्कुल,
0: बढ़ने का काम कार्यक्रम की संख्या की दृष्टि से जितना सही था कशिश, उतना ही गुणवत्ता और गंभीरता की दृष्टि से भी सही था। इसी से जब उन्होंने देश के समक्ष पहली बार रचनात्मक कार्यक्रम की बात की तब 3 कार्यक्रम सूचित किए और आगे बढ़ते हुए 18 रचनात्मक कार्यक्रम बने। इस बारे में भी उन्होंने कहा था कि 18 कार्यक्रम की यह सूची भी अंतिम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें भी बढ़ोतरी होने की पूरी गुंजाइश है। जैसे जैसे इन कार्यक्रमों में संभालने वाले कार्यकर्ता उनको मिलते गए, वैसे वैसे कशिश गांधी जी के मार्गदर्शन के अधीन इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती गई। इनमें से बहुत से कार्यक्रमों की गहराई तक वे कार्यकर्ताओं की मदद से जा सकते थे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथियों, रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी की अहिंसक समाज रचना की कल्पना के आधार पर और देश की वास्तविकता के ज्ञान के कारण बने थे। गांधी जी देश व दुनिया को जो कतिपय बड़ी से बड़ी देन दे गए, उनमें रचनात्मक कार्यक्रम सहज स्थान पाने योग्य थे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य अहिंसक समाज व्यवस्था खड़ी करना था। इसके लिए साथियों उनको तीन चीजें जरूर लगी थी। ऐसा समाज निर्मित करना हो तो उसमें हर तरह का शोषण नष्ट होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए प्रशासन तंत्र कम से कम होना चाहिए, यानी कि जहां लोग ही अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने लगे वहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसा करने में वर्तमान समाज में जो अड़चने हो साथियों, वे दूर होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: अगर दूसरे शब्दों में कहें अंजलि जी, तो अहिंसक समाज निर्मित करना हो तो गांधी जी का उसका लक्ष्य शोषण समाप्त किया जाना और समाज में से शासन को यथासंभव कम से कम किया जाना चाहिए, इस तरह दिखाई देता था।
0: बिल्कुल
1: साथियों, इन दोनों लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो बाधाएं आए उनको दूर करना, यही रचनात्मक काम था। हम देखते हैं कि बाधाएं दूर करने की गांधी जी की प्रक्रियाओं में दो बातों पर बल दिया गया था। पहली बात तो यह कि इन सभी कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत सबसे पिछड़े हुए लोगों में से करनी चाहिए।
0: जी जी,
1: और दूसरी बात यह कि उनके परिणाम स्वरूप लोगों की ताकत बढ़नी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है सबके गांधी में रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर, ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं सबके गांधी में रचनात्मक कार्यक्रम प्रकरण में। श्रोता साथियों, गीत से पहले जैसा कि हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत कौमी एकता, खादी और अस्पृश्यता निवारण से की थी। आखिर में उन्होंने जो समग्र रचनात्मक कार्यक्रम सूचित किया था जो कि इस प्रकार है, जैसे कि कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, नशाबंदी, खादी, अन्य ग्रामोद्योग, ग्राम स्वच्छता, नई तालीम, प्रौढ़ प्रशिक्षण, महिलाएं, स्वास्थ्य नियमों का शिक्षण, प्रांतीय भाषाएं, राष्ट्रभाषा, आर्थिक समानता, इसी के साथ कशिश, किसान, मजदूर, आदिवासी, रक्तपित्त के रोग और विद्यार्थी। श्रोता साथियों, ये कार्यक्रमों में किसी निश्चित नियम का गांधी जी ने पालन किया हो ऐसा नहीं लगता। जैसे जैसे उनकी नजरों के सामने आता काम गया, वैसे वैसे उन्होंने उसे रचनात्मक कार्यक्रम में स्थान दे दिया। इन 18 कार्यक्रमों के बाद गो सेवा का कार्यक्रम आया था, जबकि वह प्रवृत्ति तो गांधी जी ने वर्षों पहले शुरू कर दी थी। संपूर्ण कार्यक्रम पर एक साथ नजर डालें तो तत्काल ये बात हमारे ध्यान में आएगी कि गांधी जी ने इन कार्यक्रमों के निमित्त से जीवन के बहुत से पक्षों को स्पर्श किया है। इसलिए कार्यक्रमों में ऐसे कई हैं जो जीवन के एक से अधिक क्षेत्रों को स्पर्श करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन कार्यक्रमों का विचार कशिश गांधी जी ने जिस क्रम में प्रस्तुत किया था उसके बजाय यदि वह जीवन के अलग अलग क्षेत्रवार विचार करें तो समग्र कल्पना स्पष्ट होनी अधिक संभव है। रचनात्मक कार्यक्रमों के आर्थिक पहलू में हम खादी, ग्राम उद्योग, आर्थिक समानता, किसान, मजदूर और कुछ सीमा तक गो सेवा का समावेश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों, जो लक्ष्य तक पहुंचने का है वह आर्थिक समानता का है और जिसकी मार्फत वह लक्ष्य प्राप्त करना है वे किसान, मजदूर और गांव के कारीगर हैं। यह कार्यक्रम कशिश जिन प्रवृत्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है वे खादी और ग्रामोद्योग की है। कृषि सुधार का कार्यक्रम भी इसमें आ जाता है। हालांकि श्रोता साथियों, गांधी जी ऐसा मानकर चलते थे कि देश के 80% लोग किसान हैं और मुख्य रूप से उनके पुरुषार्थ से ही स्वराज आने वाला है। वे कहते हैं कि स्वराज की इमारत जबरदस्त है, उसको बनाने में किसानों की संख्या सबसे बड़ी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, किसानों को जब अपनी अहिंसक शक्ति का ज्ञान होगा तब दुनिया की कोई सत्ता उनके समक्ष टिकने वाली नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: भूमि सुधार और कानून आदि के प्रश्न स्वराज प्राप्ति के बाद हाथ में लिए जाने हैं और स्वराज से पूर्व तो किसानों को उनकी अहिंसक शक्ति के बारे में सजग सावधान किया जाना है।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं चंपारण में किसानों की जागरूकता के कारण सवा सौ वर्षों से चली आने वाली अन्यायी तीन कठिन प्रथा 6-8 महीनों में अहिंसक आंदोलन से समाप्त हो गई। उससे पूर्व इस प्रथा के समक्ष बहुत से हिंसक विपल्व हुए थे साथियों, उनमें किसानों को कुचला डाला गया था।
0: बिल्कुल,
1: परंतु अहिंसक संघर्ष बहुत कम समय में सफल हुआ। यदि इस प्रकार किसानों के मात्र सभा जुलूसों और उकसाने के कार्यक्रमों के बजाय उनके दुखों से संबंधित मुद्दे लेकर उस संबंध में लोक जागृति की जाए अंजलि जी, तो अहिंसक शक्ति द्वारा किसान बड़े परिवर्तन करने की ताकत दिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टि से तो कृषि सुधार के साथ साथ ही गो सेवा भी आ जाती है। गाय हमारे कृषि के संपूर्ण चक्र का एक बहुत आवश्यक अंग है दोस्तों।
0: जी जी,
1: वह हमें खेती करने की ऊर्जा का एक बड़ा साधन बेल देती है, कृषि को पुष्ट करने वाली खाद देती है और किसान को पुष्ट करने वाला दूध देती है।
0: बिल्कुल साथियों, गांधी जी के अहिंसक जागृति और संगठन द्वारा लोक शक्ति पैदा करके स्वराज की इमारत बनाने का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसकी इकाइयों के रूप में उन्होंने गांवों को लिया। वे तब तक स्वराज के लिए शहरों में सभा सम्मेलन करने वाले और प्रस्ताव रखने वाले लोगों को यह बात समझाते थकते नहीं थे कि हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी तो गाँव में निवास करती है, गाँव की जागृति का कार्यक्रम सबसे पहले हाथ में लिया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: फिर वे यह भी मानते थे कि किसी भी संपूर्ण समाज की वास्तविक शक्ति को जगाना हो तो समाज के सबसे निर्बल अंग को मजबूत करने से ही जगाई जा सकती है। इसलिए अंत्योदय के इस विचार के पीछे सबसे दलित पीड़ित के प्रति करुणा और संपूर्ण समाज को मजबूत करने की व्यूह रचना एक साथ काम करती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए उन्होंने गाँव के काम में खादी ग्रामोद्योग को पहला स्थान दिया। जो लोग अभी तक खादी का ग्रामोद्योग के कामों में लगे हुए थे और बड़े बड़े उद्योगों के आने से जिनकी रोजी रोटी छीन गई थी, उनको वह भिक्षा के रूप में नहीं पर स्वाभिमान पूर्वक मेहनत के बदले में दी जाए तो समाज का यह सबसे दरिद्र वर्ग खड़ा हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: जिस प्रकार समग्र जंजीर की सबसे कमजोर या टूटी हुई कड़ी को कशिश सुधारने से पूरी जंजीर मजबूत होती है, उसी प्रकार समाज में सबसे पीछे रहने वाले लोगों की ताकत बढ़ती है तो पूरे समाज की ताकत बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: खादी ग्राम उद्योग और गो सेवा के आर्थिक कार्यक्रम श्रोता साथियों इस दृष्टि से ही रचनात्मक काम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन कार्यक्रमों खास तौर से खादी के काम में दूसरे भी स्पष्ट लाभ थे। इस तरफ गांधी जी ने शुरू से ध्यान दिया था। खादी का काम ऐसा था कि जिसमें अधिक से अधिक समय लेने वाला काम कताई तो जब चाहे शुरू किया जा सकता था और जब चाहे समेट कर दूसरी ओर रखा जा सकता था। वर्ष में 4-6 माह पूरे काम के बगैर रहने वाले किसान के लिए यह फुर्सत के समय काम देने जैसी क्रिया थी। साथ ही यह काम ऐसा था कशिश जिसे छोटे बड़े स्त्री पुरुष बूढ़े और अधिकांश बीमार लोग भी कर सकते हैं। बहुत कम पैसा लगने से ये साधन मिल सकते हैं और अधिकांशतः गांव के सुथार लुहार इन कामों की मरम्मत कर सकते थे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही थी रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर, अगले रविवार को हम फिर से जुड़ेंगे इसी प्रकरण के साथ में हमारे श्रोता साथियों से, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में इसी प्रकरण से जुड़ी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन
6: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके,
5: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
6: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
5: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
6: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
5: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची शकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
0: कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
6: जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं नए और पारंपरिक व्यंजनों की विधि को लेकर। तो आज भी हम कार्यक्रम के माध्यम से नए व्यंजनों की विधि के बारे में आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों मैंने गीत से पहले आपको बताया था कि आज भी हम नए व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रही हैं प्रेरणा जी, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सब्जियों को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जिससे उनका पोषण भी बना रहे और साथ ही स्वाद में भी बहुत अच्छी लगे, ताकि बच्चे और घर परिवार के सभी सदस्य हरी सब्जियों को देखकर जो मुंह बना लेते हैं वो नहीं बनाए। तो आइए सुनते हैं प्रेरणा जी के माध्यम से व्यंजनों की विधि के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रेरणा और मैं बांसवाड़ा क्षेत्र में रहती हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप हमारे वागड़ क्षेत्र में ही रहती हैं और आप एक गृहिणी भी हैं और एक माँ भी हैं, इसी के साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप ये चीज़ बहुत ही बखूबी तरीके से निभा रही हैं। आप अपने घर पर सभी के पोषण का भी ध्यान रखती हैं, तो आज कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सी रेसिपी हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगी, जिससे उनके खाने का पोषण भी बना रहे और साथ ही बाजार की जो चीज़ें हैं जिन्हें हमें बार बार खाने का मन करता है वो भी ना करें, उसका स्वाद हमें घर पर ही मिल जाए।
1: बहुत सही बात कही आपने अंजलि जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात करते हैं अपने खाने की, तो मेरे घर में जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, कई बार कुछ सब्जियां होती है जो वो खाना पसंद नहीं करते।
0: बिल्कुल,
1: तो उन सब्जियों को हमें इस तरीके से पकाना चाहिए कि वो उनका रुचि जागृत हो उसको खाने के लिए। तो इसीलिए मैं जब बनाती हूँ तुरही, जिसे हम गिलकी भी बोलते हैं, उस सब्जी को मैं बनाती हूँ मूंगफली के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: ये मेरी माता जी जो है उन्होंने सिखाया था मुझे, क्योंकि मैं सब्जी खाती नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से बनाना सिखाया।
0: अच्छा, बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि मूंगफली को तुरई के साथ बनाकर खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब कार्यक्रम में आप हमें ये बताइए कि इसे बनाने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए और साथ ही इसे बनाने की विधि क्या है।
1: जी बिल्कुल, जब हम इसे बनाते हैं बहुत ही सादा तरीके से बनाना होता है, इसमें कोई मसाला कुछ नहीं लगता। आप मूंगफली को सेक लीजिए, सेक के उसे दरदरा पीस के एक साइड रख दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: फिर आप तुरई को छील के उसे काट लीजिए छोटा छोटा, और फिर कढ़ाई के अंदर आप तेल डालिए, उसमें जीरे का एक तड़का मार दीजिए, उसके बाद में जो आपकी काटी हुई तुरई है वो उसमें डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, और फिर इस नमक तेल में उस तुरई को पकने दीजिए, क्योंकि तुरई पानी छोड़ती है, वो अपने ही पानी से उसको पक जाएगी। जो पूरी पक जाती है तब उसके अंदर आप थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी डाल दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: आपके स्वाद अनुसार। और फिर जो आपकी सेकी हुई दरदरी पीसी हुई मूंगफली है, जितनी आपकी तुरई कटी हुई थी उतनी वो मूंगफली का सामग्री होती है, वो उसमें डाल के जल्दी जल्दी चला दीजिए, वो पूरा मिक्स हो जाएगा और बस आपकी सब्जी बन गई।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाती है, जो हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। यही मैं जानना चाहूंगी कि इस सब्जी को खाने से हमारे बच्चों का पोषण किस तरीके से

0: बना रहेगा।
1: जैसा कि हम जानते हैं कि तुरई में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और तुरई स्वाद में जब हम ऐसे ही बनाते हैं तो बच्चे उसे मुंह से निकाल देते हैं, खाते ही नहीं हैं। जब उसे हम मूंगफली के साथ डालते हैं तो बच्चे उसे बहुत स्वाद के साथ खाते हैं, क्योंकि उसमें तुरई का कोई स्वाद नहीं आता, सिर्फ मूंगफली का स्वाद आता है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों में पोषण की कमी को बहुत ज्यादा देखा जाता है। ऐसे में माताएं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करके अगर सब्जियां बनाएंगी तो बच्चे उसे चाव से खाएंगे और बच्चों का घर पर पोषण बना रहेगा। तो जैसा कि प्रेरणा जी आपसे हमारी कार्यक्रम में बातें हमारे व्यंजनों की विधि को लेकर चल ही रही है, इसी बीच हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को गीत संगीत सुनवाते हैं। तो आज भी हम कार्यक्रम के माध्यम से आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे।
1: तो जहाँ तक गीत की बात है अंजलि जी, मुझे एक गीत बहुत पसंद है। मुझे राजस्थानी लोकगीतों का बहुत शौक है, तो एक गीत है प्यारी प्यारी मूमल, आप वो गीत जरूर सुनाइएगा श्रोता जी को।
0: बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं प्रेरणा जी की पसंद की इस राजस्थानी गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम में गीत से पहले हमारी प्रेरणा जी से बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें गिलकी को मूंगफली के साथ बनाना है और उसके क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, यहीं प्रेरणा जी एक और कौन सी व्यंजन विधि के बारे में आप हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगी?
1: एक जो मैं सब्जी बनाती हूँ जो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है वो है लौकी और पत्ता गोभी को एक साथ बनाना।
0: बिल्कुल,
1: तो इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि लौकी को घिस लेती हूँ, जैसे हम गाजर को घिसते हैं जब हलवा बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो लौकी का पता नहीं चलता कि लौकी है उसमें।
0: बिल्कुल,
1: और पत्ता गोभी को तो हम छोटा छोटा काटते हैं तो उसी प्रकार से घिसने जैसा ही उसका टेक्सचर हो जाता है। और दोनों सब्जियों को काटने और घिसने के बाद में साइड में रख के मैं लहसुन अदरक का, प्याज का और टमाटर का एक झोंक लगाती हूँ, उसको अच्छे से पकने देती हूँ और फिर ये दोनों चीज़ों को, सब्जियों को कटी को, उसके अंदर डालती हूँ। और जब ये सारा पक जाता है नमक डाल करके, फिर ऊपर से जो मसाले डालने होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची और जीरा पाउडर, ये सब डाल करके पका करके ये सब्जी आपकी तैयार हो जाती है।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रेरणा जी आपने बताया कि पत्ता गोभी के साथ हम लौकी भी बना सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पत्ता गोभी के साथ सिर्फ आलू ही डलते हैं और वो उसे ही मिक्स करके बनाते हैं, और बहुत से लोगों को आलू से एलर्जी होती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में हम केवल पत्ता गोभी न बनाकर उसमें लौकी को, जैसा कि आपने बताया, कि गाजर की तरह किस कर भी बना सकते हैं। और हम देखते हैं कि पत्ता गोभी और लौकी दोनों ही हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है?
1: जैसे हम जानते हैं कि इसमें भी आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो भी आप सब्जी काटते हैं वो काटने के बाद अगर काली पड़ जाती है तो इसका अर्थ होता है कि उसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। तो हम लौकी में भी आयरन जानते हैं और पत्ता गोभी में तो बहुत सारे विटामिन होते ही है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो हमें दोनों सब्जियों का पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से दोनों व्यंजनों की विधि के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें किस तरीके से अपने परंपरागत जो खान पान है उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए?
1: मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी दादा दादी लोग, नानी लोग खाना बनाते थे वो बहुत ही पौष्टिक हुआ करता था, और उस समय हम अपने ही घर की लगी हुई सब्जियां बनाते थे, अपने ही आंगन में लगी हुई सब्जियां बनाते थे, तो उस कारण से उसका पोषण और अधिक बढ़ जाता था।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम उन्हें बनाते थे बहुत ही सादे सिंपल तरीके से बनाया जाता था, ज़्यादा मसाला नहीं, ज़्यादा तेल नहीं, लेकिन बहुत सादे तरीके से। अगर हम राजस्थान का खाना देखें तो जो भी सब्जियां यहाँ उपलब्ध है वो सारी सब्जियों को हम संपूर्ण रीति से खाते हैं, उन सब्जियों का अचार भी बनाते हैं और साथ ही साथ उन सब्जियों को हम पराठे में या रोटी में मिक्स करके भी
0: खा लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि घर पर बना खाना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, और हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जो औषधीय पोषण के तौर पर हमारे थाली में होनी चाहिए। तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बात करके आप लोगों से, और आगे मिलते रहेंगे।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रेरणा जी जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बताया तुरई, जिसे हम गिलकी बोलते हैं, उसके साथ मूंगफली हम कैसे मिक्स करके बना सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी और लौकी की सब्जी हम कैसे बनाएं। तो श्रोता साथियों, ये मिश्रित सब्जी पोषण का खजाना है। लौकी और गिलकी शरीर को हल्का रखने, पाचन सुधारने और पानी की कमी को पूरी करने में मदद करते हैं। वहीं पत्ता गोभी में विटामिन सी, फाइबर और एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक है। वहीं मूंगफली इस सब्जी में प्रोटीन, स्वास्थ्य वसा और ऊर्जा का अच्छा स्रोत जोड़ती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि रंग बिरंगी सब्जियों का मेल केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि शरीर को संतुलित पोषण देकर स्वस्थ जीवन की नींव को भी मजबूत करता है। तो आप सभी आज से ही एक बात ध्यान में रखें कि रसोई में जितनी विविधताएं होंगी थाली में उतना ही पोषण होगा और स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। तो ये थी हमारी कार्यक्रम की व्यंजनों की विधि। आशा करती हूँ कि ये आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है व्यंजनों की विधि को लेकर, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
3: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े

वागड़ रेडियो 90.8 FM प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, मैं विश्व के विधानों का वितान हूँ, अच्छे शासन संचालन का ताना बाना, मैं भारत का संविधान हूँ।
1: जी हाँ, संसार की अच्छाइयों को थामे मैं विस्तृत और महान हूँ, सुख शांति व अमन का पक्षधर मैं भारत का संविधान हूँ।
0: बिल्कुल, नीतिप्रद और कर्तव्य परायण मैं राष्ट्र नीति का अनुशासन हूँ, घायल हृदयों को सहलाता मैं भारत का संविधान हूँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रही थी भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में, इसी बीच आज रविवार ये विशेष कार्यक्रम में आज हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी को।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज केवल उसकी पहचान का प्रतीक नहीं होता है जागृति जी, बल्कि वह पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। हमारी आजादी की लड़ाई में भी लंबे समय तक एक सर्वमान्य ध्वज की कमी खली।
1: जी हाँ,
0: रियासतों के अपने अपने झंडे थे लेकिन वे देश की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। इस ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, राष्ट्रीय ध्वज बनाने की पहल, इस ध्वज में किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाए, इस पर होने वाली बहस से लेकर अंतिम रूप से तिरंगों को राष्ट्रीय ध्वज माने जाने का सफर अत्यंत दिलचस्प रहा। एक लंबे सफर के बाद वह ध्वज सामने आया जिसे हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं और जिसे देखते ही हाथ स्वतः सम्मान सलामी देने लगते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, प्राचीन काल से ही ध्वज सामूहिक एकजुटता का प्रतीक रहा है। यही कारण है कि दुनिया के हर देश का एक ध्वज होता है। वह ध्वज उसकी सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में लंबे समय तक किसी चीज की कमी खली तो वह था एक ऐसा ध्वज जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक भारत का प्रतिनिधित्व करता हो।
0: जी बिल्कुल,
1: जिससे भारत की जनता जुड़ाव महसूस करती हो। भारत को भी तिरंगे झंडे के रूप में अपना राष्ट्रीय ध्वज मिला, लेकिन शून्य से शुरुआत करके तिरंगे को अपनाने तक का सफर अत्यधिक दिलचस्प रहा।
0: जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं जागृति जी कि औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज, यानी कि श्रोता साथियों सन 1857 में पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी एक राष्ट्रीय ध्वज की बजाय देश की अलग अलग रियासतों के अपने अपने ध्वज हुआ करते थे। यह दिलचस्प बात है कि महादेश कहे जाने वाले भारत को उसका पहला ध्वज औपनिवेशिक शासन में साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन द्वारा दिया गया।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया जागृति जी, तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए अपना झंडा चुना। यह झंडा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में प्रस्तुत करता था। नीले रंग के इस ध्वज की बाई और ऊपरी यूनियन जैक बना था, जबकि दाहिने हिस्से के बीच में ब्रिटिश क्राउन में स्टार ऑफ इंडिया का चित्र अंकित था।
1: बिल्कुल अंजलि, और राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी स्वतंत्र देश की पहचान को स्थापित करने में राष्ट्रीय ध्वज एक अहम प्रतीक की भूमिका निभाता है।
0: जी जी,
1: सरोजिनी नायडू जो स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने लगी थी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज न होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था कि विश्व युद्ध के बाद जिस दिन वार्स लीज में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे उस दिन में संयोगवश पेरिस में थी, हर तरफ खुशी थी, ओपेरा हाउस सभी राष्ट्रों के झंडों से सजा था।
0: जी बिल्कुल,
1: एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रंगमंच पर आई, उसने फ्रांस के झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया, सभी दर्शक गण एक साथ खड़े हो गए और फ्रांस का राष्ट्रीय गीत दी मार्स लीज गाया गया। तब एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भर कर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा, मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही, वह समय आने वाला है जब हमारा अपना झंडा भी होगा और राष्ट्र गीत भी होगा।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी अब हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज यानी कि 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के प्रतिरोध में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पारसी बागान चौराहे पर एक झंडा फहराया। यह एक चौकोर तिरंगा झंडा था जिसमें हरी पीली और लाल नारंगी पट्टियां थी। सबसे ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। अनाधिकारिक रूप से यह पहला भारतीय ध्वज था। सन 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने क्रांतिकारियों के साथ पेरिस में लगभग इस तरह का झंडा फहराया। पहली बार केसरिया रंग का इस्तेमाल इसी झंडे में हुआ था। इसके बाद कुछ वर्षों तक भारत के ध्वज पर कोई खास पहल नहीं हुई।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर राष्ट्रीय ध्वज की पहल पिंगली वेंकैया की भूमिका को अगर बताएं,
0: जी हाँ,
1: तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे पिंगली वेंकैया भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने बौर युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ी। 19 साल की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी से मिले। उनकी तमन्ना थी कि भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वह ज्यादातर खेती में लगे रहे, तो वह दूसरी तरफ उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा सीखने के लिए वे लाहौर में स्थित एंग्लो वैदिक स्कूल भी गए।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में बहुत अच्छी बातें चल रही है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी को लेकर, तो ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय ध्वज की पहल पिंगली वेंकैया की भूमिका के बारे में, तो साथियों उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया और ऐसे ध्वजों की एक पुस्तक प्रकाशित की जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो सकते थे।
1: बिल्कुल,
0: वर्ष 1918 और 21 के बीच वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के ध्वज की बात उठाते रहे। भारत आने के बाद वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मिले और उन्हें विभिन्न देशों के ध्वजों पर अपने प्रकाशन दिखाए और भारत की राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत के बारे में बात की। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, पिंगली वेंकैया ने जो आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में कार्यरत है विभिन्न देशों के ध्वजों के बारे में पुस्तक प्रकाशित की है और भारत की राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी कई प्रारूप बनाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने के लिए उनके द्वारा किए गए सतत प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ।
1: जी हाँ,
0: महात्मा गांधी ने उनसे झंडे तैयार करने के लिए कहा। वेंकैया द्वारा बनाए गए शुरुआती झंडे में लाल और हरा रंग ही था। बाद में महात्मा गांधी और लाल हरदयाल के सुझावों के बाद उसमें शांति के प्रतीक के रूप में सफेद रंग और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे के पहिए को जोड़ा गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति ने इस ध्वज को लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग स्थापित करने को कहा।
1: बिल्कुल,
0: और इसमें रंगों के स्थान भी परिवर्तित कर दिए गए। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस ध्वज को अपना लिया।
1: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज अगर इस पर बात करें तो देश को आजादी मिलने से 23 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत की राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में प्रस्ताव रखा गया।
0: जी हाँ,
1: अंजलि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा जिसमें गहरे केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की तीन आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा।
0: जी हाँ,
1: चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक स्तंभ पर अंकित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। पंडित नेहरू ने अपने भावनात्मक प्रस्ताव में कहा, इस महान राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए जो महान युद्ध किया मुझे उसकी सफलताएं और असफलताएं याद आती है।
0: जी बिल्कुल,
1: सभा के सदस्यों को याद होगा कि हम किस प्रकार इस झंडे को केवल गौरव और उत्साह ही नहीं वरन शरीर में एक स्फूर्ति और उत्तेजना भरने वाला मानते थे। जब हम पराजित और निरुत्साहित हो जाते थे तब इस झंडे का दर्शन आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिलाता था।
0: जी जी,
1: मैं आपको ये झंडा भेंट करता हूँ।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें चरखे की जगह कैसे आया चक्र। तो श्रोता साथियों, सन 1930 से ही देश की आजादी का आंदोलन जिस ध्वज के नीचे हो रहा था वह तिरंगा ही था, लेकिन इसके मध्य में चक्र के स्थान पर चरखा था। इसे क्यों बदला गया? पंडित नेहरू के मुताबिक चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था उसका चक्र एक ओर था और तकुआ दूसरी ओर।
1: जी हाँ,
0: यदि आप झंडे को दूसरी ओर से देखें तो चक्र इस ओर आ जाता था और तकुआ उस ओर। यह व्यावहारिक कठिनाई थी, इसलिए यथेष्ट विचार करने के बाद हमने यह सोचा कि इस महान चिन्ह को रखा जाए किंतु थोड़ा परिवर्तन करना होगा। तब हमने चक्र को रखा और शेष भाग तकुए और माल को नहीं रखा।
1: इसी के साथ अगर बात करें तो अशोक चक्र ही क्यों? यानी कि अंजलि ये सवाल भी उचित ही है कि जब चरखे की जगह चक्र रखने का निर्णय लिया गया तो अशोक चक्र को ही अपनाने का ख्याल मन में क्यों आया?
0: जी बिल्कुल,
1: दरअसल साथियों उस समय अनेक चक्रों पर विचार हुआ परंतु अशोक की प्रमुख लाट के सिरे पर बना चक्र चुना गया क्योंकि यह देश की प्राचीन सभ्यता का चिन्ह भी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इस विषय में नेहरू जी ने कहा, हमने इसे इसीलिए अपनाया क्योंकि हम मानते हैं कि भारत किसी महान लक्ष्य को न अपनाता तो वह जीवित भी न रहता और न इस दीर्घ काल तक अपनी सभ्यता मूलक परंपराओं को जारी रख सकता था। यह अपनी परंपराओं को जारी रखने में दृढ़ न रहा बल्कि परिवर्तन करता रहा, हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करता रहा और कभी कभी बुरी बातें भी ग्रहण की परंतु अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति सच्चा रहा। हजारों वर्षों में हमारे ऊपर तमाम नए प्रभाव पड़े लेकिन हमने दूसरों को भी खूब प्रभावित किया।
0: जी बिल्कुल, दोस्तों कहना चाहेंगे कि नेहरू जी ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का यह सोचना मूर्खतापूर्ण है जागृति जी,
1: कि वह शेष संसार को दे सकता है, उससे कुछ ले नहीं सकता। जब कोई राष्ट्र या कौम ऐसा सोचने लग जाती है, वह रूढ़ और प्रगतिहीन हो जाती है।
2: जी हाँ।
1: भारत के इतिहास को देखने पर आपको पता चलेगा श्रोता साथियों कि भारत की अवनति का काल वह रहा होगा जब उसने अपने आप को सबसे पृथक कर दिया और बाहरी दुनिया की ओर देखना या उससे कुछ ग्रहण करना बंद कर दिया। और भारत का स्वर्ण काल वह था जबकि उसने सुदूर देशों में दूसरे को अपनाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, अपने राजदूत और गुप्तचर भेजे, अपने सौदागर और व्यापारिक प्रतिनिधि उन देशों को भेजे तथा दूसरे देशों के राजदूतों और गुप्तचरों का स्वागत किया।
2: जी हाँ। तो अंजलि, जैसे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमारे श्रोता साथियों से बात की भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी, इसमें आज हमने जाना औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की पहल, पिंगली वेंकैया की भूमिका, साथ ही स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज, चरखे की जगह कैसे आया चक्र और अशोक चक्र ही क्यों। अगले रविवार कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं अशोक यानी अंतर्राष्ट्रीयता तिरंगा यानी स्वाधीनता के बारे में, गांधी जी की नाराजगी के बारे में, कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने, इसी के साथ राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में, और साथ में हम जानेंगे भय और हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज।
1: जी बिल्कुल साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा था की दोस्ती करवी है।
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
5: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
4: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
5: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: सेहत नु राज हूँ है बोन,
8: असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह।
7: होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा।
8: होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
9: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
10: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके,
9: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
10: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण अपना ने अपने मई देखाए तो अपना ने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया की निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
9: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
10: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़ बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
9: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति। स्वागत करती हूं आज की सायंकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। श्रोताओं बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज वार रविवार दिनांक 21 जून 2026 का दिन है। श्रोताओं संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रुक करेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की गाथा में, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसी क्रम में अगला कार्यक्रम होगा हमारा प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति यानी कि मेरे साथ में। श्रोताओं फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को, और इस कार्यक्रम को लेकर आने वाली है हमारे रेडियो साथी आरजे अंजलि पाराशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोताओं जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता ही रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास कार्यक्रम हिंद स्वराज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को श्रोताओं आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इन कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर और सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को 9 से 10 बजे के बीच में। तो श्रोताओं यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

0: इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती है। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का
2: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
2: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। संघर्ष के बीच एक एहसास जो उन्हें मजबूत बनाता रहा, यह महापुरुषों की अनकही प्रेम गाथा।

साथियों, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, समर्पण से बड़ा कोई कर्म नहीं। यही जीवन की सच्ची राह है। जहाँ सेवा का भाव होता है, वहीं समर्पण का प्रकाश होता है और वहीं सफलता का वास होता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर ही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को एक नए महापुरुष के जीवन परिचय के साथ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने जीवन से साबित कर दिया अंजलि कि एक डॉक्टर केवल रोगों का इलाज नहीं करता बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को स्वस्थ दिशा भी दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी है भारत रत्न से सम्मानित महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। श्रोता साथियों, उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुआ और इसी कारण भारत में हर वर्ष यानी कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, बिधान चंद्र रॉय भारत के उन महान व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने चिकित्सा, समाज सेवा और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। वे कुशल चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और एक दूरदर्शी राजनेता थे। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस उनके सम्मान में मनाया जाता है, जैसा कि आपने बताया। और जैसा कि हम जान पाए आपके माध्यम से कि उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों ही एक ही दिन आते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ। उनके पिता प्रकाश चंद्र राय सरकारी सेवा में थे और माता अघोर कामिनी देवी समाज सेवा में रुचि रखती थी। बचपन से ही उनमें अनुशासन, ईमानदारी और सेवा भावना के संस्कार विकसित हुए थे।
1: जी जी।
0: उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था लेकिन शिक्षा को सर्वोच्च महत्व देते थे। यही कारण था श्रोता साथियों कि बालक विधान ने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई को जारी रखा।
1: जी हाँ जागृति जी, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की। बचपन से ही वे मेधावी, परिश्रमी और अनुशासित छात्र थे। गणित और विज्ञान विषयों में उनकी विशेष रुचि थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डॉक्टर रॉय ने डॉक्टर बनने के बाद चिकित्सा सेवा को केवल पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा का माध्यम माना। आगे की पढ़ाई के लिए जागृति जी वे इंग्लैंड गए, जहाँ उन्होंने बहुत कम समय में MRCP और FRCS जैसी प्रतिष्ठित उपलब्धियां प्राप्त की जो उस समय अत्यंत कठिन मानी जाती थी।
0: बिल्कुल अंजलि, उनका एक प्रिय सिद्धांत था कि जो भी कार्य तुम्हारे हाथ में आए उसे पूरी शक्ति और निष्ठा से करो।
1: बिल्कुल,
0: यही वाक्य उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया। श्रोता साथियों, उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसा कि अंजलि आपने बताया वो इंग्लैंड गए थे। वहाँ उन्होंने कठिन परिश्रम और असाधारण प्रतिभा के बल पर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों क्षेत्रों में उच्च योग्यता प्राप्त की।
1: बिल्कुल,
0: उनकी उपलब्धियाँ इतनी उत्कृष्ट थी कि वे उस समय के सबसे प्रतिभाशाली भारतीय चिकित्सकों में गिने जाने लगे। श्रोताओं सोचिए, एक युवा, सीमित साधन, विदेशी भूमि और अनगिनत चुनौतियाँ, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो कठिनाइयाँ रास्ता नहीं रोक पाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि भारत लौटने के बाद उन्होंने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। वे गरीबों का उपचार अत्यंत संवेदनशीलता और समर्पण के साथ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय चिकित्सा परिषद और चिकित्सा संगठनों के विकास में उन्होंने बहुत उल्लेखनीय योगदान भी दिए।
0: बिल्कुल,
1: डॉक्टर विधान चंद्र रॉय केवल चिकित्सक ही नहीं थे जागृति जी, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े। उन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए अपना योगदान भी दिया। इसलिए कहा जाता है कि वे महात्मा गांधी के निजी चिकित्सकों में से एक थे।
0: बिल्कुल,
1: उनका विश्वास था कि स्वस्थ नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण को एक दूसरे का पूरक माना।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भारत लौटने के बाद डॉक्टर राय ने चिकित्सा सेवा को अपना मिशन बना लिया था और वे गरीबों का निस्वार्थ उपचार करते थे। उनके लिए मरीज केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मानवता का स्वरूप थे।
1: बिल्कुल,
0: उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि लोग उन्हें केवल डॉक्टर नहीं बल्कि जीवनदाता मानने लगे थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। भारतीय चिकित्सा समुदाय को मजबूत बनाने के लिए श्रोता साथी उन्होंने कई संस्थाओं के विकास में भूमिका निभाई और चिकित्सा व्यवस्था को संगठित करने में योगदान दिया।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटा सा संवाद है अंजलि रोगी और डॉक्टर राय के बीच में जो हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: जैसे कि रोगी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है, तब डॉक्टर राय ने कहा कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, पहले स्वस्थ हो जाइए, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को लेकर बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने रोगी और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के बीच के संवाद को जाना, यही बात करें राजनीतिक जीवन की, तो श्रोता साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर रॉय ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे पश्चिमी बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने और 1950 से लेकर 1962 तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल ने विकास की नई दिशा भी प्राप्त की थी।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी नियोजन पर विशेष ध्यान दिया। उनके प्रयासों से पश्चिमी बंगाल में अनेक महत्वपूर्ण नगरों और संस्थाओं का विकास हुआ। वे एक दूरदर्शी प्रशासक थे जिन्होंने विभाजन के बाद की कठिन परिस्थितियों में राज्य को स्थिरता और विकास की राह पर आगे बढ़ाया।
1: जी हाँ अंजलि, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राय केवल चिकित्सक ही नहीं थे बल्कि देशभक्त भी थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर देश सेवा का कार्य किया। श्रोता साथियों, वे महात्मा गांधी जी के बहुत निकट सहयोगी में गिने जाते थे और उनके चिकित्सक के रूप में भी कार्य करते थे।
0: बिल्कुल,
1: उनका मानना था अंजलि कि स्वस्थ नागरिक ही स्वतंत्र और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। देश की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राय ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। 1948 में वे पश्चिम बंगाल के प्रीमियर बने और बाद में स्वतंत्र भारत में पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री बने।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि हमने पहले भी बताया था, उन्होंने 1962 तक इस पद पर रहकर राज्य के विकास को नई दिशा दी। उस समय श्रोता साथी, विभाजन के कारण लाखों शरणार्थी, बेरोजगारी और अनेक सामाजिक समस्याएं सामने थी, लेकिन डॉक्टर राय ने चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। श्रोता साथियों, कहा गया है कि सच्चा नेता तो वही होता है जो संकट में रास्ता दिखाए, और डॉक्टर विधान चंद्र राय भी ऐसे ही नेता थे। अंजलि, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने नए नगरों के विकास की योजना बनाई, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। उनके नेतृत्व में दुर्गापुर, कल्याणी और विधाननगर जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ, जिन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की। और हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और आधारभूत संरचना पर भी उन्होंने बहुत विशेष ध्यान दिया। उनके

0: ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, मानवता और सर्वोच्च मूल्य थे। वे मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उनकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि समाज के प्रति उनके योगदान से मापी जानी चाहिए। उनकी कार्यशैली में दृढ़ता और संवेदनशीलता का अद्भुत संतुलन था। चाहे मरीजों का उपचार हो, राज्य का प्रशासन हो या राष्ट्र निर्माण का कार्य, उन्होंने हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। कहना चाहेंगी कि 1 जुलाई 1962 को अपने 80वें जन्मदिन के दिन ही डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का निधन हो गया।
1: बिल्कुल,
0: यह एक दुर्लभ संयोग था कि जिस दिन उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा उसी दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा भी कहा।
1: बिल्कुल,
0: उनके निधन से भारत ने एक महान चिकित्सक, दूरदर्शी नेता और मानवतावादी व्यक्ति को खो दिया।
1: जी हाँ अंजलि, जैसा कि 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ही मनाया जाता है और हमारे श्रोता साथियों से हमारी मुलाकात 1 जुलाई को नहीं हो पाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसीलिए आज ही हमने हमारे श्रोता साथियों को बता दिया कि आखिर हम क्यों मनाते हैं डॉक्टर दिवस। श्रोता साथियों, ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति को समर्पित है क्योंकि उनका जन्म और निधन दोनों इसी दिन हुए थे, जैसा कि अभी आपने बताया, और ये दिवस डॉक्टरों की सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है।
0: जी जी,
1: डॉक्टर राय का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है अंजलि, जैसे कि कठिन परिस्थितियाँ सफलता को नहीं रोक सकती, शिक्षा और परिश्रम सफलता की कुंजी होती है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, नेतृत्व का उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए, स्वस्थ समाज ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये सारी सीख हमें उनके जीवन से मिलती है। डॉक्टर विधान चंद्र राय केवल एक डॉक्टर नहीं थे बल्कि वे मानवता की सेवा का जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने अस्पतालों में मरीजों का दर्द भी समझा और मुख्यमंत्री के रूप में जनता की समस्याओं का समाधान भी किया।
0: जी हाँ,
1: उनका जीवन हमें बताता है श्रोता साथियों कि महानता पद या प्रतिष्ठा से नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए किए गए कार्यों से प्राप्त होती है।
0: जी हाँ,
1: जब भी कोई डॉक्टर किसी मरीज को नया जीवन देता है अंजलि, जब कोई युवा समाज सेवा का संकल्प लेता है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, तब डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रेरणा जीवित हो उठती है। तो श्रोता साथियों, हम भी उनके आदर्शों को अपनाएं और ऐसा जीवन जिए जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। कहा गया है कि सेवा का हो जीवन आधार, यही है डॉक्टर विधान चंद्र राय का सच्चा उपहार।
0: जी हाँ, तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन, बिल्कुल प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल

0: साथियों, आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। बस अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें। यदि हम किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सके तो वही डॉक्टर राय के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय भले ही आज हमारे बीच नहीं अंजलि, लेकिन उनकी सेवा, उनके विचार और उनकी प्रेरणा आज भी लाखों दिलों में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाती है।
1: जी हाँ,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, जीवन वो ही महान है जो मानवता के काम आए। सेवा, समर्पण और करुणा से ही सच्चा सम्मान हमें मिलता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातें ढेर सारी हुई। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए महापुरुषों की प्रेम गाथा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जून का तीसरा रविवार हम फादर्स डे मनाते हैं, तो आज 21 जून है और आज ही के दिन हम फादर्स डे मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं आपको फादर्स डे स्पेशल कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी मैं आपको जरूर सुनाऊंगी श्रोता साथियों, और जानेंगे कि हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व होता है। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में आपकी अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि आप सभी को बताया था कि हर रविवार को मैं प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि जून महीने का तीसरा रविवार, जो कि हम फादर्स डे स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मनाते हैं। तो श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पिता के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारे जीवन में पिता का क्या महत्व होता है। साथियों, जब भी जीवन में प्रेम, त्याग, संघर्ष और जिम्मेदारी की बात होती है, तब सबसे पहले माता पिता का चेहरा सामने आता है। माँ जहाँ अपने स्नेह और ममता से घर को स्वर्ग बनाती है, वहीं पिता अपने परिश्रम, त्याग और संघर्ष से उस घर की नींव को मजबूत करते हैं। पिता के बारे में कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि पिता वो व्यक्ति है जो स्वयं कठिनाइयों को सहकर अपने बच्चों के लिए खुशियों का रास्ता बनाते हैं। फादर्स डे केवल एक दिन नहीं, बल्कि पिता के त्याग और समर्पण को याद करने का अवसर है। ये दिन हमें सोचने का मौका देता है कि हमारे जीवन में पिता का कितना बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का शीर्षक है जीवन में पिता का महत्व। ये कहानी उन सभी पिताओं को समर्पित है श्रोता साथियों, जो अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपने पिता के त्याग को तब समझ पाया जब जीवन ने उसे जिम्मेदारियों का वास्तविक अर्थ समझाया। कहानी शुरू होती है दोस्तों इस तरह से कि एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम था रवि। मोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, मैं भले ही खेतों में मेहनत करूं, लेकिन मेरा बेटा कलम से अपनी पहचान बनाएगा। रवि बचपन से ही होशियार था दोस्तों। स्कूल में उसके अच्छे अंक आते थे, गांव के शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते थे। ये सुनकर मोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। लेकिन मोहन की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों। उसके पास केवल 2 एकड़ जमीन थी। खेती से जितनी आय होती, उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। फिर भी मोहन ने कभी रवि की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। जब गांव के बच्चे खेतों में काम करते थे, तब रवि पढ़ाई करता था। उसके पीछे उसके पिता की मेहनत छिपी हुई थी। हर सुबह 4 बजे उठकर मोहन खेतों में चला जाता। गर्मी, सर्दी, बारिश, कोई भी मौसम हो, उसे रोक नहीं पाता था। उसके हाथों में पड़े छाले और चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्ष की कहानी कहते थे दोस्तों। लेकिन रवि धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा था। अब उसके सपने गांव से बड़े हो चुके थे। अब वो शहर जाकर पढ़ना चाहता था। दोस्तों, मोहन ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। गांव के कई लोगों ने कहा कि इतना पैसा पढ़ाई में क्यों लगा रहे हो, खेती संभालने दो उसे। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मेरा बेटा वही जाएगा जहाँ उसके सपने उसे ले जाएंगे। साथियों, कुछ समय बाद रवि शहर के कॉलेज में दाखिल हो गया। गाँव छोड़ते समय मोहन की आंखों में खुशी थी। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा कभी मेहनत का रास्ता मत छोड़ना। रवि ने सिर हिलाया और शहर चला गया। शहर पहुंचकर रवि की दुनिया ही बदल गई दोस्तों। यहाँ बड़े बड़े मॉल थे, महंगे मोबाइल थे, शानदार कपड़े थे और आधुनिक जीवन शैली थी। धीरे धीरे रवि अपने गांव और अपने पिता को लेकर संकोच महसूस करने लगा। जब उसके दोस्त अपने पिता के बड़े व्यवसाय और नौकरियों की बात करते, तब रवि चुप हो जाता। उसे ऐसा लगता था कि उसका जो किसान पिता है, वो दूसरों से कम है। एक दिन कॉलेज में पेरेंट्स डे का आयोजन हुआ। सभी छात्राओं के माता पिता आए। मोहन भी गांव से रवि से मिलने आया। उसने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना था, लेकिन वो भी पुराना था दोस्तों। उसके पैरों में घिसी हुई चप्पल थी। जब मोहन कॉलेज पहुंचा, तब रवि अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। मोहन खुशी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन रवि को शर्म महसूस हुई। उसने अपने दोस्तों से परिचय करवाने के बजाय जल्दी जल्दी पिता को हॉस्टल के कमरे में ले गया। मोहन ने बेटे की आंखों में झिझक देख ली थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने केवल इतना पूछा, बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है ना? रवि ने कहा, हाँ सब ठीक है। मोहन शाम को वापस गांव लौट गया। रास्ते भर उसका मन भारी रहा, लेकिन उसने अपने दर्द को किसी को भी नहीं बताया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में रवि का चयन एक प्रतिष्ठित कंपनी के इंटरव्यू के लिए हुआ। लेकिन दोस्तों, इंटरव्यू दूसरे शहर में था और वहां जाने के लिए पैसे चाहिए थे। रवि ने पिता को फोन किया। मोहन ने कहा, चिंता मत कर बेटा, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था आसान नहीं थी। घर में पैसे नहीं थे, फसल भी इस बार खराब हो गई थी। मोहन ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। अंत में उसने अपनी सबसे प्रिय बैलों की जोड़ी बेच दी। साथियों, वे बैल उसके लिए केवल जानवर नहीं थे, बल्कि वर्षों के साथी थे। उन्हें बेचते समय उसकी आंखें नम थी।
लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि बेटा अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ पाएगा। कुछ दिनों बाद पैसे रवि के खाते में पहुंच गए। रवि इंटरव्यू देने के लिए चला गया। उसने इंटरव्यू में शानदार प्रदर्शन किया और नौकरी उसे मिल गई। साथ ही जब उसने ये खबर पिता को दी तब मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। नौकरी मिलने के बाद रवि महानगर चला गया। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। महंगा फ्लैट, अच्छी सैलरी, नई कार, सब कुछ उसके पास था, लेकिन व्यस्तता के कारण उसने गांव जाना कम कर दिया। पहले हर सप्ताह फोन करता था, फिर महीने में एक बार, और अब धीरे धीरे वो भी कम हो गया था। मोहन हर शाम दरवाजे पर बैठकर बेटे के फोन का इंतजार करता रहा, लेकिन फोन अक्सर नहीं आता। फिर भी वो गांव वालों से गर्व से कहता, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है। उसके चेहरे पर शिकायत नहीं, केवल गर्व था। साथियों, एक दिन रवि अपने ऑफिस में बैठा था, तभी गांव से फोन आया। फोन पड़ोसी का था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, रवि बेटा जल्दी गांव आ जाओ, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। रवि के हाथ कांपने लगे, वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तब मोहन बेड पर लेटा हुआ था। चेहरा कमजोर था, लेकिन बेटे को देखते ही मुस्कुराया। रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, उसने पिता का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये वही हाथ है जिसने उसे चलना सिखाया था। ये वही हाथ है जिसने खेतों में मेहनत करके उसका भविष्य बनाया था। ये वही हाथ है जिसने अपनी जरूरत को छोड़कर उसकी हर जरूरत को पूरी की थी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इलाज में देरी इसीलिए हुई क्योंकि मोहन पैसे बचाना चाहता था। वह अपनी बीमारी पर खर्च करने के बजाय पैसे बेटे के भविष्य के लिए जमा कर रहा था। श्रोताओं, रवि स्तब्ध रह गया। उसे ये भी पता चला कि उसकी नौकरी के इंटरव्यू के लिए पैसे जुटाने के लिए पिता ने बेल बेच दिए थे और कई बार उन्होंने खुद के लिए नई चप्पल तक भी नहीं खरीदी। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसे अपने सारे व्यवहार याद आने लगे। वो दिन याद आया जब उसे पिता पर शर्म आई थी। वो समय याद आया जब उसने महीनों फोन नहीं किया था। उसे महसूस हुआ कि सफलता की दौड़ में उसने उस इंसान को सबसे ज्यादा दुख दिया जिसने उसे सफलता तक पहुंचाया था। साथियों, अगली सुबह मोहन ने रवि को पास बुलाया। धीरे से बोला, बेटा जीवन में कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। रवि फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मैंने बहुत गलतियां की हैं। मोहन मुस्कुराया और कहा कि गलती हर इंसान करता है, लेकिन जो अपनी गलती पहचान लेता है वही सच्चा इंसान होता है। ये शब्द रवि के दिल में हमेशा के लिए श्रोता साथियों बस गए। पिता के स्वस्थ होने के बाद रवि ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गांव में एक आधुनिक पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र बनवाया। उसका नाम रखा मोहन ज्ञान केंद्र। उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। उद्घाटन के दिन पूरे गांव के सामने रवि ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। मेरी सफलता मेरी नहीं, मेरे पिता के त्याग की सफलता है। मोहन की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। साथियों, कहानी हमें शिक्षा देती है कि पिता अक्सर अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं करते। वे मैं तुमसे प्यार करता हूँ कम कहते हैं, लेकिन अपने हर त्याग से ये साबित करते हैं कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वे अपनी इच्छाओं का बलिदान देकर बच्चों के सपनों को पंख देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमें पिता की डांट दिखाई देती है। जब बड़े होते हैं तब हमें उस डांट के पीछे छिपी चिंता भी दिखाई देती है। जब सफल होते हैं तब समझ आता है कि हमारी सफलता की नींव पिता के त्याग पर खड़ी है। यदि हमारे पिता आज हमारे साथ है श्रोता साथियों, तो उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पिता को याद तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें गले नहीं लगा सकते। फादर्स डे पर कोई महंगा उपहार जरूरी नहीं है श्रोता साथियों, एक सच्चा धन्यवाद पिताजी और थोड़ा सा समय ही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि पिता वो दीपक है जो स्वयं जलकर अपने बच्चों का जीवन रोशन करते हैं। उनका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उनका सम्मान अवश्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फादर्स डे स्पेशल। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है, वो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और मैंने गीत से पहले फादर्स डे स्पेशल कहानी आपको सुनाई थी मोहन और रवि के बारे में, कि किस तरह से मोहन ने अपने बेटे के लिए अपने बेल तक को भी बेच दिया था ताकि वो आगे बढ़ सके। हम कह सकते हैं दोस्तों, पिता हमारे जीवन की वो छाव है श्रोता साथियों, जो जीवन में कोई भी हमें वो छाव नहीं दे सकता। वो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम उन्हें ही भूल जाते हैं, जैसे कि रवि भूल गया था। तो श्रोता साथियों, मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास पिता है तो उनका सम्मान कीजिए, उनसे बात करिए, उन्हें पूछिए कि आपको क्या जरूरत है, क्योंकि पिता कभी अपनी बातों को दिल से नहीं कहते, वो अंदर ही अंदर बातों को सोचते रहते हैं। अगर आप भी एक बेटे हैं और आप अपने पिता से बातचीत करना चाहते हैं तो आप आज ही बैठकर अपने पिताजी से बात करिए। और मैं आपको कहना चाहूंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि पिता परिवार का वो स्तंभ है जिस पर पूरी घर की जिम्मेदारियां टिकी होती है। वे अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। पिता अपने व्यवहार और अनुभव से बच्चों को समय का महत्व, मेहनत का मूल्य और जिम्मेदारियों को निभाने की कला सिखाते हैं। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाते हैं, ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना सिखाते हैं। मेहनत को सफलता की कुंजी किस तरह से माननी है ये भी हमें पिता से ही पता चलता है। तो श्रोता साथियों, फादर्स डे केवल उपहार देने का दिन नहीं, ये दिन अपने पिता के संघर्षों को समझने, उनके त्याग को सम्मान देने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। हो सकता है कि आपके पिता बहुत कम बोलते हों, लेकिन उनका हर संघर्ष, हर चिंता और हर प्रयास आपके उज्जवल भविष्य के लिए होता है। जब भी जीवन में सफलता मिले, उस सफलता के पीछे खड़े उस व्यक्ति को मत भूलिए जिसने अपने सपनों से पहले आपके सपनों को महत्व दिया है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंचकर पीछे जरूर देखिएगा। वहां आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देगा जिसने खुद धूप में चलकर आपके लिए छाव बनाई थी। वो व्यक्ति आपके पिता है। इस फादर्स डे पर केवल इतना कह दीजिए श्रोता साथियों, पिताजी आपके त्याग और प्रेम के लिए धन्यवाद। यकीन मानिए श्रोता साथियों, शब्द उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार होंगे, क्योंकि कहा गया है कि पिता है जीवन का सम्मान, उनसे ही है हमारी पहचान, उनके चरणों का करो सत्कार, यही है सच्चा फादर्स डे उपहार। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आज की कहानी और आज की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी। आ गई हूँ मैं बच्चों आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर, बात नन्हे दिलों की को लेकर। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में जब भी आपकी अंजलि दीदी हाजिर होती है तो कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी प्यारी कहानियों को लेकर आती है। तो आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रेरणादायक कहानियां अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करें, फिर हमारी प्यारी सी बातों की शुरुआत करें। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि आज कार्यक्रम के माध्यम से मैं नई प्यारी सी कहानियों को लेकर हाजिर हो गई हूँ और आज हम देख रहे हैं कि 21 जून का दिन है और आप सभी को पता है कि 21 जून का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही खास है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और पिता दिवस मना रहे हैं। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि योग हमें स्वस्थ शरीर और शांत मन का संदेश देता है, संगीत हमारे जीवन में खुशियों से रंग भरता है और पिता दिवस हमें उन पिताओं के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है जो हमारे जीवन की मजबूत नींव होते हैं। तो तैयार हो जाइए श्रोता साथियों, प्रेरणा, आनंद और भावनाओं से भरी तीन सुंदर कहानियों को सुनने के लिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हम एक छोटी सी कहानी योगी आरव की। जी हाँ श्रोता साथियों, ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि आरव एक चंचल और होशियार लड़का था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसे मोबाइल पर गेम खेलना, टीवी देखना और दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह सुबह देर से उठता था, व्यायाम नहीं करता और अपने स्वास्थ्य का तो बच्चों बिल्कुल ख्याल नहीं रखता था। धीरे धीरे इसका असर उसके शरीर पर दिखने लगा। वह जल्दी थक जाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। उसकी माँ उसे रोज समझाती कि बेटा सुबह जल्दी उठो और थोड़ा व्यायाम करो, लेकिन आरव ठहरा कि उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देता। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, यानी कि आज के दिन सभी बच्चों को योग के महत्व के बारे में बताया गया। स्कूल में योग शिक्षक आए, उन्होंने बच्चों को समझाया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है बल्कि यह मन को शांत और मजबूत भी बनाता है। बच्चों शुरू में तो आरव को यह बहुत उबाऊ लगा। उसने सोचा कि योग करना बुजुर्गों का काम है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके कई दोस्त बड़े उत्साह से योग सीख रहे हैं तो उसने भी कोशिश करना शुरू कर दिया। अगले दिन वह पहली बार उस स्कूल के योग शिविर में गया। वहां उसने ताड़ासन, वृषासन, भुजंगासन और प्राणायाम सीखा। शुरू शुरू में उसे कठिनाई हुई, कभी उसका संतुलन बिगड़ जाता तो कभी वह जल्दी थक जाता, लेकिन योग शिक्षक ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। आरव ने बच्चों तय किया कि वह रोज सुबह आधा घंटा योग करेगा। धीरे धीरे उसे योग में आनंद आने लगा और कुछ ही सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि उसकी थकान कम हो रही है और वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा था। अब वह सुबह जल्दी उठता, योग करता और फिर पढ़ाई करता। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। जो विषय उसे कठिन लगते थे वे अब आसान लगने लगे। उसके अध्यापक भी उसकी प्रगति देखकर खुश हो गए। कुछ महीनों बाद स्कूल में खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई। पहले आरव खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था, लेकिन इस बार उसने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। नियमित योग प्राणायाम के कारण उसकी सहन शक्ति बढ़ गई थी। उसने पूरी लगन से दौड़ लगाई और दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार लेते समय उसे अपने योग शिक्षक की बातें याद आ गई कि योग शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाता है। बच्चों अब आरव अपने दोस्तों को भी योग के लिए प्रेरित करता था। उसने घर के पास के पार्क में बच्चों का एक छोटा योग समूह भी बना लिया। हर सुबह वे सब मिलकर योग करते और फिर खेलते। योग दिवस के अवसर पर स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा जाता जहाँ आरव को मंच पर अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। उसने सभी बच्चों को बताया कि कैसे योग ने उनका जीवन बदल दिया। उसकी बात सुनकर सभी ने जोरदार तालियां बजाई। उस दिन आरव को समझ में आया कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है। इसलिए हम सभी को भी अपने जीवन में योग के महत्व को समझ कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये तो हमारी प्यारी सी कहानी रही योग को लेकर। आगे हम सुनेंगे संगीत दिवस और पिता के महत्व को लेकर एक प्यारी सी कहानी, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए बच्चों सुनते हैं इस गीत को।

Ha ha ha ha ha!

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाई योग के महत्व को लेकर, यहीं अब सुनते हैं संगीत के महत्व को लेकर प्यारी सी कहानी। बच्चों, इस कहानी का विषय है सुरों को जादू। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि रिया नाम की एक बच्ची थी जिसे गाना गाना बहुत पसंद था। जब भी वह गाती उसके घर का माहौल खुशियों से भर जाता। एक दिन स्कूल में संगीत दिवस मनाया जाना था। रिया को मंच पर गाने का अवसर मिला, लेकिन वह बच्चों बहुत घबरा रही थी। उसकी दादी ने कहा कि संगीत डर नहीं, खुशी बांटने का माध्यम है, दिल से गाओ। कार्यक्रम के दिन रिया ने हिम्मत जुटाई और मधुर गीत गाया। उसका गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के बाद उसे खूब तालियां मिली। तब बच्चों, रिया को समझ में आया कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने की शक्ति भी रखता है। हम देखते हैं ना कि जब भी हमारा मन खराब होता है या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है तो हम भी संगीत सुनते हैं। जब हम हमारे मन पसंद के गीत संगीत सुनते हैं तो हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। ये कहानी हमें सीख देती है कि संगीत मन को आनंद देता है और लोगों को प्रेम के बंधन से जोड़ता है। तो यह थी हमारी प्यारी सी कहानी सुरों का जादू। यही अगली कहानी हमारी है पापा का अनमोल उपहार। जी हाँ, आज हम बच्चों फादर्स डे भी मना रहे हैं और यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पापा हम सभी की जान होते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि रोहन सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते थे। परिवार की आय बहुत अधिक नहीं थी लेकिन पापा हमेशा कोशिश करते थे कि घर में किसी चीज की कमी न रहे। रोहन अपने दोस्तों को नई नई साइकिल चलाने देता था। उनकी भी इच्छा थी कि उनके पास एक सुंदर साइकिल हो। उसने कई बार अपने पापा से कहा लेकिन हर बार पापा मुस्कुराकर कहते, बेटा थोड़ा और इंतजार करो। रोहन को लगता कि शायद पापा उसकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में पिता दिवस पर निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विषय था मेरे पापा मेरे हीरो। रोहन सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या लिखे। उसी दौरान उसने एक बात पर ध्यान दिया। उसके पापा रोज सुबह जल्दी उठते, ऑफिस जाते, देर शाम लौटते और फिर भी घर के कामों में माँ की मदद करते। एक दिन उसने देखा कि पापा की पुरानी घड़ी खराब हो चुकी है। माँ ने उनसे नई घड़ी लेने को कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ दिन बाद पिता दिवस आया। सुबह सुबह पापा घर आए और एक बड़ा डिब्बा रोहन के सामने रख दिया। जब रोहन ने डिब्बा खोला तो उसमें नई चमचमाती साइकिल थी। रोहन खुशी से उछल पड़ा लेकिन तभी उसे माँ से पता चला कि पापा कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे थे। उन्होंने अपनी नई घड़ी और कई दूसरी जरूरतें टाल दी ताकि रोहन की इच्छा पूरी कर सके। यह सुनकर रोहन की आंखों में बच्चों आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि पिता का प्यार हमेशा शब्दों में नहीं दिखता, कई बार वह त्याग, मेहनत और जिम्मेदारी के रूप में दिखाई देता है। उसने पिता दिवस पर अपने पापा के लिए एक कार्ड बनाया और उसमें लिखा कि पापा, आपने मुझे साइकिल से भी बड़ा उपहार दिया है। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार त्याग और समर्पण में छिपा होता है। कार्ड पढ़कर पापा की आंखें भी भर आई। उस दिन रोहन ने महसूस किया कि दुनिया में पिता जैसा कोई साथी नहीं होता। वे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए चुपचाप संघर्ष करते रहते हैं। इसके बाद रोहन ने पढ़ाई में और मेहनत करनी शुरू की। वह जानता था कि अपने

हर बच्चे का कर्तव्य है। तो बच्चों, यह थी हमारी प्यारी सी कहानी पापा का अनमोल उपहार। आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानियाँ सुनाई है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ बच्चों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई प्यारी प्यारी कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दीदी अंजलि दीदी को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

तके निकरते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, नींद चैन का त्याग कर आंखें खोलनी पड़ती है। मेहनत करना आसान नहीं, पूरी जिंदगी झुकनी पड़ती है। दिन रात को एक बनाकर मेहनत से सफलता मिलती है, माली के खून पसीने से ही बाग में कली खिलती है। जिस मेहनत को करने से आज हम थर थर कांपते हैं, उसी मेहनत और तपस्या में सफलता का रास्ता मिलता है। इस दृढ़ता को आदत हमें बनाना होगा। छू सकते हैं हम हर मंजिल, हमें खुद को यह याद दिलाना होगा। हार जीत की सोच रखे बिन मेहनत अब हमें करनी है। लोगों की क्यों बातें सुने जब जंग हमें खुद से लड़नी है। कोशिश हमारी काया है और मेहनत हमारी परछाई है। लोगों की इन बातों से नहीं, खुद से अब हमारी लड़ाई है। कठिन राहें हैं कांटों वाली, किंतु मंजिल में फूल मिलेंगे। परिश्रम हमारा कठिन है, किंतु परिणाम हमें अनुकूल मिलेंगे। परिश्रम की गर्मी में खुद को हमें तपाना होगा। छू सकते हैं हम हर मंजिल, हमें खुद को यह याद दिलाना होगा। दुनिया गीत गाएगी अब की बार देखना, चुक रहे ना कोशिश में कुछ, एक ऐसी पारी हमें खेलनी होगी। ये कठिन परिश्रम हमारा है, मेहनत अवश्य रंग लाएगी। रात अमावस्या की है काली, पर फिर दिवाली आएगी। अभी जमीन का कण भर है, आगे पूरा आसमान है। बस चलते जाना है हमको, मंजिल हमारे पास है। इस कीमती जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना होगा। छू सकते हैं हम हर मंजिल, खुद को हमें यह याद दिलाना होगा।
1: जो तेरे कद से इरादे

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर, और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागट रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो श्रोता साथियों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों को। मैम नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि जी।
0: मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: मैम जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं, और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान जो है हर रविवार को आता है, और इसी बीच कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ भी जुड़ते हैं, और उनसे हम जानते हैं कि उनका बचपन जो है वो किस कदर बीता, शिक्षा का क्षेत्र उनका कैसा रहा। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि उनका जो जीवन है उनमें क्या चुनौतियाँ आई और किस तरीके से उन्होंने उस चुनौती को पार किया। तो मैम सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी अंजलि जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए।
0: जी जी।
1: मेरा नाम स्नेहलता स्वर्णकार है। मैं राजकीय वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी से हूँ, और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुपड़ा में अपनी सेवाएं दे रही हूँ।
0: जी जी।
1: यहाँ पर मैं लगभग 2019 से आयु, तो लगभग मुझे 5 वर्ष हो चुके हैं, और इससे पहले मैं खेड़ाबरा जो माही डैम रोड पर स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर पोस्टेड थी।
0: जी बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आप एक शिक्षिका हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अलग होता है, हमारे ऊपर बच्चों के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी भी होती है। तो मैम जैसा कि बातें तो इस विषय पर हम ढेर सारी करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी शिक्षिका के पद पर रहकर किस तरीके से बच्चों के भविष्य को संवार रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: जी जी बिल्कुल। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यहाँ पर मेरा ससुराल है।
0: जी जी।
1: तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा पड़ता है, कानोड़ नाम है उसका।
0: जी बिल्कुल।
1: कानोड़ में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो है वह एक शिक्षक है।
0: जी बिल्कुल।
1: और हम 4 बहनें हैं, और बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा, अभावों में बीता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बहुत संघर्ष कह सकती हूँ कि करके और आज ये स्थान मैंने प्राप्त किया है।
0: जी बिल्कुल। मैम जैसा कि आपने कहा कि आपका जो बचपन है वो अभावों में बीता और आपने बहुत सारा संघर्ष किया, तो मैं आपके उस संघर्ष को जानना चाहूंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से जो बच्चे हैं उनका जो जीवन है वो संघर्ष में होता है, लेकिन बहुत सी बार वो हार मान जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संघर्ष से लड़कर जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है वो अपने जीवन में एक नई पहचान बनाता है, और जैसा कि आपने अपने जीवन में एक नई पहचान बनाई है, तो मैं आपके संघर्षों को जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस तरीके से अभावों में बीता, आपके माता पिता क्या करते थे, क्या उस समय की स्थिति रहा करती थी।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो परिवार होते थे वहाँ परिवार में संख्या बहुत सदस्यों की ज्यादा होती थी।
0: जी जी।
1: उसी प्रकार मेरे दादाजी थे, उनके 6 पुत्र और 1 पुत्री थी, तो हम कह सकते हैं कि वो सब बच्चों को एक जैसी सुविधाएं नहीं दे पाए।
0: जी जी।
1: तो मेरे पापा का संघर्ष शुरू हुआ, फिर उस समय मैं ये कह सकती हूँ कि पुत्र की चाह में उनकी भी 4 पुत्रियां हुई।
0: जी जी।
1: और हाँ, बाद में उन्होंने उन सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, पर उनको इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मम्मी मेरी उस समय सिर्फ 5वीं पास थी, हाउसवाइफ थी, तो उन्होंने भी सिलाई बुनाई का कार्य सीखा। अब 4 पुत्रियों को पढ़ाना लिखाना, या तो एक ऑप्शन था कि वो उनको 14 साल 15 साल 16 साल के होके विवाह करवा दे और अपने अपने घर भेज दे।
0: जी जी।
1: दूसरा ऑप्शन उनके पास था कि वो उनको पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दे, ट्रेनिंग करवाए।
0: जी बिल्कुल।
1: जॉब में भेजे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।
0: जी जी बिल्कुल।
1: उन्होंने सारी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, बकायदा ट्रेनिंग भी कराई।
0: जी जी।
1: और उसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किए, स्वयं की इच्छाओं को समाप्त किया, और मम्मी ने हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी, पापा ने संघर्ष किया, और उसका परिणाम यह है कि आज हम 4 बहनों में से 3 जो है वह राजकीय सेवा में है।
0: जी जी।
1: और सबसे छोटी वाली बहन है, उसने भी अभी एमए बीएड किया है, वह भी ट्रेनिंग करी है और अभी कंपटीशन एग्जाम की वह भी तैयारी कर रही है।
0: जी बिल्कुल, तो मैम हम कह सकते हैं कि संघर्ष में बिता हुआ जो जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आगे उसका जो परिणाम है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो मैम जैसा कि हम आपके बचपन के बारे में जान पाए, यही अब मैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ रहा, आपने किस तरीके की पढ़ाई कर रखी है।
1: जी जी अंजलि जी, मैं आपको बता देती हूँ कि कानोड़ था, वहाँ पर एक ही प्राइवेट कॉलेज था। तो शिक्षा तो मैंने अपनी पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक राजकीय विद्यालय से ही उत्तीर्ण करी है।
0: जी जी,
1: हमने कोई ट्यूशन नहीं लिया, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद कॉलेज की बात थी तो कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी।
0: जी जी,
1: तो पापा उस समय दे नहीं पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट जो थे उस तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो हमने वहीं से प्राप्त करी। उसके बाद भी पढ़ाई हमने निरंतर जारी रखी।
0: जी हाँ,
1: फिर हमने बीएड की ट्रेनिंग करी और वह भी हमने गवर्नमेंट कॉलेज से ही करी, पढ़ाई करके उसको हासिल किया। और उसके बाद बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन क्लासेस के, फिर आगे एग्जाम की तैयारी करी।
0: जी बिल्कुल, तो मैम जैसा कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में हमने अभी जाना, हम यही मैं आपकी हॉबीज जानना चाहूंगी, क्या बचपन से आप एक शिक्षक ही बनना चाहते थे?
1: हाँ, एक्चुअली क्लास में भी जब हम फ्री पीरियड में खेलते थी लड़के आपस में, घर पे भी हम खेलते थे, तो बस एक टीचर वाला गेम ही मुझे सबसे अच्छा लगता था और मेरे मन में यही था
0: जी जी
1: कि मैं एक शिक्षिका बनूं।
0: जी बिल्कुल, तो मैम जैसा कि आपने कहा कि आपका बचपन से ही ये सपना था कि आप एक शिक्षिका बने और आप अभी उस पद पर कार्य भी कर रही हैं, लेकिन मैम हम देखते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है?
1: जी जी, मुझे बच्चों को पढ़ाने के अलावा कविताएं लिखना पसंद है।
0: जी जी,
1: उसके अलावा मैं छोटी थी तब डांस क्लास भी चलाती थी, बच्चों को डांस भी सिखाती थी।
0: जी बिल्कुल,
1: और इस तरीके से मेरे और भी शौक रहे हैं, जैसे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है।
0: जी बिल्कुल, तो मैम जैसा कि आपने कहा कि आप कविताएं लिखती हैं, तो मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी कविता सुनना चाहूंगी ताकि हमारे जो श्रोता साथी हैं उनको भी कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा मनोरंजन हो जाए और कुछ एक जागरूकता की जो चीजें होती हैं वो भी उन्हें समझ में आ जाए।
1: जी बिल्कुल, मैंने ऐसे तो बहुत विषयों पर अलग अलग कविताएं लिखी है, पर अभी बेटी पर समर्पित आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: गुड़िया तुम कितनी प्यारी हो, खिलती सी कलियों की क्यारी हो, हे याद मुझे वो दिन प्यारा जब तुम आई मेरे जीवन में, बदल गया था हर दिन मेरा, थी उथल पुथल अब हर पल में, सोचा था एक किताब लिखूंगी, वह सफर जो तेरे साथ शुरू हुआ उसका हर एहसास लिखूंगी, वह क्षण ही कितने सुंदर थे, सच कहूँ तो वो रोमांचक थे, हर क्षण में उतार चढ़ाव चले, हर पल में कई बदलाव चले, तेरी किलकारियों से शुरू में थोड़ा प्यार हुआ, पर जब वो रोके नहीं रुकती तब तो सोचो जीना दुश्वार हुआ, एक खौफ सा फैल गया मन में, आतंक सा मचा दिया घर में, जब कोई बच्चा नया नया आता है घर में थोड़े दिन तो बहुत प्यार आता है, पर अचानक से जब वो बहुत ज्यादा रोता है तो सब डर जाते, अरे रे रे।
0: जी बिल्कुल,
1: जब तुम झूले में सोती थी सब श श करते रहते थे, दबे दबे कदमों से वह तुम्हारे पास से गुजरते थे, अब तुम मुझे पहचानती थी, तुम्हारी माहू में यह जानती थी, सच कहूँ मैं भी तो अब जान पाई, यह माँ शब्द की परिभाषा पहचान पाई, तुझको सीने से लगाकर स्वर्ग का सुख पाती थी मैं, अब यह घड़ी भी बदल रही थी, तुम दिन दिन चंचल प्यारी और भी प्यारी एक सुंदर रूप में निखर रही थी, जब बच्चा खेलने लग जाता है तब की यह है, दादा दादी नाना नानी सबकी राज दुलारी बन, इठला इठला कर मचल रही थी, तुतली तुतली बोली तेरी जंकृत करती मन के तार, तेरी हर अटकेली पर में मन ही मन रही नजर उतार, कहते हैं माँ की नजर सबसे पहले लगती है, तो माँ सबसे पहले नजर उतार लेती है। ओ मेरी प्यारी बिटिया मेरे जीवन की खुशियाँ है तू, तू ही मेरा प्यार वादा मैं तुझसे करती हूँ, हर पल में तेरे संग रहूंगी चाहे कोई भी बाधा आए, तेरे जीवन से दूर करूंगी। अब तो एक दुआ है रब से, खुशियों का नाता ना टूटे तेरे जीवन से, ओ मेरी प्यारी बिटिया।
0: जी बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि आपकी भी एक छोटी सी प्यारी बेटिया है और उसी माध्यम से हम सभी लोग भी अपनी जो बेटियां होती हैं उनके जीवन के महत्व को समझ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जो बेटी होती है वो अपने

0: मम्मी पापा के साथ साथ जो जिस घर में भी वो शादी करके जाती है उन दोनों ही घर को वो बहुत अच्छे से संभालती है। तो जैसा कि आपने बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाई है, और भी कोई ऐसी कविता है जो हमारे जो श्रोता साथी हैं उनको प्यारा सा संदेश दे पाए तो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
1: जी जी, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। एक हरित राजस्थान कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है।
0: जी जी,
1: उसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे को 5 पौधारोपण का जिम्मेदारी दी गई है।
0: जी बिल्कुल,
1: प्रत्येक शिक्षक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अंतर्गत हमने अभी लगभग 1200 से भी ज्यादा पौधे जो है हमारे विद्यालय में लगाए हैं।
0: जी जी,
1: अभी लक्ष्य और भी है। तो उसी मतलब कड़ी में मैंने एक कविता लिखी है कि पर्यावरण से संबंधित है।
0: जी बिल्कुल,
1: वह मैं आपको भी सुनाती हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: पीपल की गुहार मेरी कविता का शीर्षक है। रुको अभी करो इंतजार, लौट आने दो पहले गिलहरियों को वापस, आ जाने दो पक्षियों को अपने घोंसले के करीब, सूरज ढलते ही हो जाएगा सक्षम उल्लू भी खाना लाने में, उतर जाएगी शाम तक चींटियां भी पत्तों से, करो इंतजार। जब एक वृक्ष को काटते हैं तो उसके अंतर्मन की जो पीड़ा होती है,
0: जी जी,
1: तो उसी पीड़ा को एक वृक्ष कैसे उजागर कर रहा है। वो कहता है कि ईश्वर के लिए बंद करो मशीनें, फेंकने को कहो तुरंत इनसे कुल्हाड़ी और हथियार, क्योंकि मनुष्यों की तरह क्रूर हृदय नहीं पाया है, मनुष्यों की तरह क्रूर हृदय नहीं पाया है परिंदों ने, आसान नहीं है उनके लिए संभालना खुद को, देख उजड़ा अपना घर बार, देख उजड़ा अपना घर बार।
0: जी बिल्कुल, तो मैम जैसा कि आपने बहुत ही प्यारी कविता लिखी है कि किस तरीके से पर्यावरण का जो संरक्षण है वो हम सभी को मिलकर करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी के समय की ये बहुत ज्यादा जरूरत बनता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन इतना ज्यादा हो गया है, प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि इसकी वजह से लोगों को अनेक समस्याएं हो रही हैं। आजकल हम ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुन रहे हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुने थे। तो हम श्रोता साथियों से यही आशा करेंगे कि जो प्यारी सी कविताएं आपके माध्यम से लिखी गई हैं जन जागरूकता के लिए, वो उन्हें अवश्य पसंद आई होगी। तो मैम, अब हम आपके जीवन की ओर बढ़ते हैं कि आपका जो जीवन है वो शिक्षिका का है और आपके पास एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया भी है। तो हम देखते हैं कि एक माँ के पास ढेर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह उन्हें अवश्य करना होता है।
1: जी जी।
0: हम देखते हैं कि एक शिक्षिका के तौर पर एक शिक्षक की भूमिका होती है बच्चों के भविष्य को संवारना, उसी के साथ उनका एक और फर्ज होता है अपने घर परिवार को संभालना। उनके घर परिवार में उनके साथ दो दो चीजें जुड़ती हैं, एक माता पिता का परिवार और एक सास ससुर का परिवार। उसमें एक और चीज एड हो जाती है, बच्चों की परवरिश। तो मैम, आप ये जिम्मेदारियाँ कैसे निभाती हैं? आप इन जिम्मेदारियों से थक हार कर कभी हताश, निराश, चिड़चिड़ापन, इस तरीके का व्यवहार क्या आपके अंदर कभी आया, या अगर आया भी तो किस तरीके से आपने इससे निपटने की कोशिश की?
1: जी बिल्कुल, आपने अभी ऐसा प्रश्न किया है जो वर्तमान में बिल्कुल सटीक बैठता है मुझ पर।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो अंजलि जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई माँ ये कहती है कि मैंने ये सब कुछ कर लिया तो वो बिल्कुल गलत होगा। एक माँ जो है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, ये मैं मानती हूँ। पर हाँ, अगर सबका सहयोग हो, उसमें हमारे परिवार वाले हैं,
0: जी जी,
1: विद्यालय में भी जैसे हमारे संस्था प्रधान महोदय जी है, जैसे मैं अभी जाती हूँ तो वहाँ पे हमारे संस्था प्रधान महोदय जी है, वह भी बहुत ही सकारात्मकता से भरे हुए और बहुत ही कह सकती हूँ सपोर्ट करने वाले, मतलब इस तरीके से है, तो उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिलाई। घर परिवार ने भी मुझे, मेरे सास ससुर जी, मेरे पति ने भी बहुत हिम्मत दिलाई। और एक अपने अंदर भी सकारात्मकता होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: समस्याएं आती है पर हम समस्याओं से भाग नहीं सकते।
0: जी बिल्कुल,
1: किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि समस्या से भागना ही समस्या की शुरुआत है।
0: जी बिल्कुल मैम,
1: तो समस्याएं आती है पर समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। तो उस तरीके से हमने भी समस्याओं का समाधान निकाला है। अभी बच्ची को संभालने के लिए एक ऐसी केयर टेकर की व्यवस्था करी है जो जरूरतमंद भी थी।
0: जी जी।
1: मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ इस तरीके से, तो मैं उसको जानती थी तो मैंने उसको कहा कि आप यह काम कीजिए, तो आपको मदद भी मिल जाएगी और मुझे भी मदद मिल जाएगी। तो वह भी तैयार हो गई।
0: जी बिल्कुल।
1: वो अच्छे से अपनी माँ की तरह जैसे बच्चे को संभालती है, वैसे मैं विद्यालय से जाती हूँ तब तक वो थोड़ी देर के लिए उसको संभालती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और फिर विद्यालय में हम तन मन धन से अपना कार्य मतलब समर्पित भाव से कर सकते हैं। और जब ये विद्यालय का कार्य हो जाता है फिर हम घर जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं। मैं एक इंसान हूँ इसलिए इंसान का स्वभाव है कभी प्यार कभी गुस्सा कभी सब तरह का, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कभी चिड़चिड़ापन नहीं आता है।
0: जी बिल्कुल।
1: कभी कभी कोई भी इंसान हो तो उसको कभी हो जाता है, पर हमको खुद को संभालना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक पल से ही दूसरे पल में स्वयं को संभालना पड़ता है कि नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: होता है ऐसा होता है, पर उसका समाधान निकाल के तुरंत वापस से आगे बढ़ जाना। और बच्चे तो हैं हमारी जिम्मेदारी क्योंकि हम अपनी इच्छा से उनको दुनिया में लाए हैं, तो उस बच्चे को संभालना हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम उस पर नहीं चिढ़ सकते। अगर कोई माँ अपने बच्चे पे चिढ़ती है तो उसको भी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपना गुस्सा छोटे बच्चे पर कभी ना निकालें।
0: जी बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आया है।
0: जी बिल्कुल।
1: आप उसको लेकर आए हो तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको अच्छी परवरिश दो।
0: जी बिल्कुल मैम।
1: और मैं भी इस तरीके से संपूर्ण जिम्मेदारियां संभालती हूँ।
0: जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि माँ होने के नाते हमारी ढेर सारी जिम्मेदारी होती है, और हम कह सकते हैं कि एक माँ जब अपने घर परिवार को सारी चीजों को संभालती है तो उनकी एक दिन पहले से ही तैयारी रहती है, या हम कह सकते हैं कि वो पहले से ही सोच लेती है कि मैं ये कार्य करने जा रही हूँ तो इसका निर्वाह मुझे किस किस तरीके से करना है। उनकी समय सीमा की जो पाबंदी होती है वो उन्हें अच्छे से ध्यान में होती है। हम देखते हैं कि उसी अनुसार जब वो अपने बच्चों का पालन पोषण, घर परिवार का ध्यान और अपनी जो अलग जिम्मेदारियां होती हैं जहां वो कार्य कर रही हैं वो अच्छे तरीके से निभा पाती है। तो मैम अंत में आप हमारी जो माताएं हैं जो शिक्षिका के तौर पर भी हैं या कहीं और जाकर अपने कार्य कर रही हैं, उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं उनके कार्य जो है वह व्यवस्थित होते हैं।
0: जी जी।
1: आप भी अपनी योजना बनाकर कोई भी कार्य करें, आप ये मत सोचिए कि किसी मकान का काम चल रहा है तो उसकी ही योजना बनेगी, या कोई बहुत बड़ा काम है उसकी ही योजना बनेगी। आपकी जो दिनचर्या है उसकी भी आप योजना बनाकर काम करिए।
0: जी हाँ।
1: समय को मैनेज करिए कि किस प्रकार से आपको इस समय में ये कार्य पूरा करना है, इस समय में ये कार्य पूरा करना है।
0: जी जी।
1: तो आप अगले ही दिन से देखेंगे कि वाह यार, वास्तव में ये कार्य तो इतना आसान था और मैं फालतू में इसका तनाव ले रही थी।
0: जी बिल्कुल।
1: रात को आप सब्जी काट कर रख दीजिए, सुबह की तैयारी कर दीजिए। जैसे ही सवेरे आप उठेंगे तो जैसे ही आपको सब्जी कटी हुई मिलेगी तो फटाफट से आपका खाना भी बन जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: फिर आप बच्चों को भी समय दे पाएंगे और भी दूसरे जो कार्य है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण था सब्जी का।
0: जी जी बिल्कुल मैम।
1: दूसरे कार्यों की भी आप योजना बनाइए ताकि आप आराम से उन कार्यों को एक कड़ी दर कड़ी मतलब आराम से निपटा सके।
0: जी बिल्कुल।
1: बस समय का आप मैनेजमेंट करिए, यही मैं कहना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
1: धन्यवाद आपका।
0: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आज के अतिथि जुड़े हुए थे, उनके जीवन के ढेर सारे अनुभवों को हमने जाना और बहुत सी ऐसी चीजों को जाना जो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो आशा करते हैं कि सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से मैं विदा लेना चाहूंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, आप आज जो करते हैं उस पर भविष्य निर्भर करता है, यह कथन महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि कशिश पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हमने जाना था सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में,
1: बिल्कुल
0: इसी बीच रविवार विशेष कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हम जानेंगे सबके गांधी में रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, समाज में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के दो पहलू होते हैं। समाज की वर्तमान दशा में से यह परिवर्तन कुछ को मिटा देता है और कुछ नई रचनाएं कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि सन 1968 में फ्रांस में विद्यार्थियों का एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के कशिश अनुभव के अंत में उसके अग्रणियों में से एक ने लिखा कि क्रांति कुछ नष्ट कर देती है और कुछ जमीन से नया उगा देती है। समाज की कई परंपराओं, कई मूल्यों और कई संबंधों और कई ढांचों में बदलाव आता है,
1: जी हाँ।
0: तब उसे क्रांति कहते हैं। अधिकांश क्रांतिकारी ये जानते हैं श्रोता साथियों कि समाज में से क्या मिटाना है। किसी को गुलामी मिटानी है, किसी को शोषण दूर करना है, तो किसी को असमानता हटानी है।
1: बिल्कुल,
0: अधिकांश क्रांतिकारी क्रांति के नकारात्मक पहलू को लेकर जितने स्पष्ट होते हैं कशिश, उतने क्रांति के द्वारा नया क्या करना है इस बारे में स्पष्ट नहीं होते, जिससे बहुत सी क्रांतियां अधूरी रह जाती है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सी क्रांतियों के परिणाम मूल धारणा से उल्टे ही आते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों फिर क्रांति के नेता एक व्यवस्था को तोड़ डालने के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको जब तक वह व्यवस्था टूट नहीं जाती तब तक कुछ और तो सोचता ही नहीं।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी इन दोनों मामलों में अपवाद स्वरूप क्रांतिकारी नेता थे अंजलि जी। उनके मन में समाज व्यवस्था को बदलने से लेकर जैसी कई स्पष्टता थी, उतनी ही स्पष्टता नई व्यवस्था खड़ी करने को लेकर भी थी।
0: जी जी
1: साथियों, फिर वे पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही नई व्यवस्था की बुनियाद भी निर्मित करते जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि गांधी जी को देश की उस काल की दशा बदलनी थी, उनको गरीबी दूर करनी थी, बेकारी दूर करनी थी, असमानता दूर करनी थी और गंदगी दूर करनी थी, साथ ही रोग भी दूर करने थे और अज्ञान दूर करना था। साथियों, ये तमाम दूर करने में देश की गुलामी आड़े आती थी, अतः सबसे पहले उनको गुलामी दूर करनी थी। इस तरह संपूर्ण व्यवस्था को दूर करके वे एक नई व्यवस्था खड़ी करना चाहते थे।
0: जी हाँ,
1: वे उसे अहिंसक समाज व्यवस्था कहते थे और इस नई व्यवस्था के बारे में भी उनके मन में स्पष्ट कल्पना थी। हम जानते हैं श्रोता साथियों कि इस व्यवस्था को खड़ा करने के लिए वे तब तक रुकने को तैयार नहीं थे जब तक कि गुलामी न हट जाए।
0: जी,
1: बल्कि उनके पास ऐसा कार्यक्रम भी था कि जो देश से गुलामी को हटा भी सके और नई अहिंसक समाज की नींव भी रख सके।
0: बिल्कुल कशिश, इस कार्यक्रम को उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम नाम दिया था। उनको ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि यदि पूरा देश रचनात्मक कार्यक्रमों को 100% पूरा करता है तो उसके परिणाम स्वरूप देश स्वतंत्रता भोग सकेगा।
1: बिल्कुल,
0: स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों से अलग ऐसा कोई सविनय अवज्ञा कार्यक्रम नहीं करने पड़ेंगे। गांधी जी इस प्रकार एक तरफ आदर्श के सपने देख रहे थे, वैसे दूसरी तरफ उनको देश की वास्तविक दशा की पूरी जानकारी नहीं थी।
1: जी हाँ,
0: इसलिए वे एक के बाद एक रचनात्मक कार्यक्रम देते जाते थे। इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए संस्थाएं खड़ी करते जाते थे। इन संस्थाओं को खड़ा करने के लिए वे लोगों की तलाश करते जाते थे और उन्हें वह काम सौंपते जाते थे। इस प्रकार अपना आदर्श व्यवहार की ठोस भूमिका पर खड़ा करने के लिए भी वे लोगों की तलाश करते जाते थे और उन्हें वह काम सौंपते जाते थे। इस प्रकार श्रोता साथियों, उनका आदर्श व्यवहार की ठोस भूमि पर खड़ा था कि वह धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा था।
1: बिल्कुल,
0: बढ़ने का काम कार्यक्रम की संख्या की दृष्टि से जितना सही था कशिश, उतना ही गुणवत्ता और गंभीरता की दृष्टि से भी सही था। इसी से जब उन्होंने देश के समक्ष पहली बार रचनात्मक कार्यक्रम की बात की तब 3 कार्यक्रम सूचित किए और आगे बढ़ते हुए 18 रचनात्मक कार्यक्रम बने। इस बारे में भी उन्होंने कहा था कि 18 कार्यक्रम की यह सूची भी अंतिम नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसमें भी बढ़ोतरी होने की पूरी गुंजाइश है। जैसे जैसे इन कार्यक्रमों में संभालने वाले कार्यकर्ता उनको मिलते गए, वैसे वैसे कशिश गांधी जी के मार्गदर्शन के अधीन इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती गई। इनमें से बहुत से कार्यक्रमों की गहराई तक वे कार्यकर्ताओं की मदद से जा सकते थे।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथियों रचनात्मक कार्यक्रम गांधी जी की अहिंसक समाज रचना की कल्पना के आधार पर और देश की वास्तविकता के ज्ञान के कारण बने थे। गांधी जी देश व दुनिया को जो कतिपय बड़ी से बड़ी देन दे गए उनमें रचनात्मक कार्यक्रम सहज स्थान पाने योग्य थे। अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य अहिंसक समाज व्यवस्था खड़ी करना था। इसके लिए साथियों उनको तीन चीजें जरूर लगी थी। ऐसा समाज निर्मित करना हो तो उसमें हर तरह का शोषण नष्ट होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समाज की व्यवस्था के लिए प्रशासन तंत्र कम से कम होना चाहिए, यानी कि जहां लोग ही अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने लगे वहां तक पहुंचना चाहिए। ऐसा करने में वर्तमान समाज में जो अड़चने हो साथियों वे दूर होनी चाहिए।
0: जी जी,
1: अगर दूसरे शब्दों में कहें अंजलि जी तो अहिंसक समाज निर्मित करना हो तो गांधी जी का उसका लक्ष्य शोषण समाप्त किया जाना और समाज में से शासन को यथासंभव कम से कम किया जाना चाहिए, इस तरह दिखाई देता था।
0: बिल्कुल
1: साथियों, इन दोनों लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जो बाधाएं आए उनको दूर करना यही रचनात्मक काम था। हम देखते हैं कि बाधाएं दूर करने की गांधी जी की प्रक्रियाओं में दो बातों पर बल दिया गया था। पहली बात तो यह कि इन सभी कल्याण कार्यक्रमों की शुरुआत सबसे पिछड़े हुए लोगों में से करनी चाहिए।
0: जी जी,
1: और दूसरी बात यह कि उनके परिणाम स्वरूप लोगों की ताकत बढ़नी चाहिए।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है सबके गांधी में रचनात्मक कार्यक्रमों को लेकर, ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं सबके गांधी में रचनात्मक कार्यक्रम प्रकरण में। श्रोता साथियों, गीत से पहले जैसा कि हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत कौमी एकता, खादी और अस्पृश्यता निवारण से की थी। आखिर में उन्होंने

0: सामने आता काम गया, वैसे वैसे उन्होंने उसे रचनात्मक कार्यक्रम में स्थान दे दिया। इन 18 कार्यक्रमों के बाद गो सेवा का कार्यक्रम आया था, जबकि वह प्रवृत्ति तो गांधी जी ने वर्षों पहले शुरू कर दी थी। संपूर्ण कार्यक्रम पर एक साथ नजर डालें तो तत्काल ये बात हमारे ध्यान में आएगी कि गांधी जी ने इन कार्यक्रमों के निमित्त से जीवन के बहुत से पक्षों को स्पर्श किया है। इसलिए कार्यक्रमों में ऐसे कई हैं जो जीवन के एक से अधिक क्षेत्रों को स्पर्श करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रमों का विचार कशिश गांधी जी ने जिस क्रम में प्रस्तुत किया था उसके बजाय यदि वह जीवन के अलग अलग क्षेत्रवार विचार करें तो समग्र कल्पना स्पष्ट होनी अधिक संभव है। रचनात्मक कार्यक्रमों के आर्थिक पहलू में हम खादी, ग्राम उद्योग, आर्थिक समानता, किसान मजदूर और कुछ सीमा तक गो सेवा का समावेश कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों जो लक्ष्य तक पहुंचने का है वह आर्थिक समानता का है और जिसकी मार्फत वह लक्ष्य प्राप्त करना है वे किसान, मजदूर और गांव के कारीगर हैं। यह कार्यक्रम कशिश जिन प्रवृत्तियों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है वे खादी और ग्रामो उद्योग की है। कृषि सुधार का कार्यक्रम भी इसमें आ जाता है। हालांकि श्रोता साथियों गांधी जी ऐसा मानकर चलते थे कि देश के 80% लोग किसान हैं और मुख्य रूप से उनके पुरुषार्थ से ही स्वराज आने वाला है। वे कहते हैं कि स्वराज की इमारत जबरदस्त है, उसको बनाने में किसानों की संख्या सबसे बड़ी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथियों किसानों को जब अपनी अहिंसक शक्ति का ज्ञान होगा तब दुनिया की कोई सत्ता उनके समक्ष टिकने वाली नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: भूमि सुधार और कानून आदि के प्रश्न स्वराज प्राप्ति के बाद हाथ में लिए जाने हैं और स्वराज से पूर्व तो किसानों को उनकी अहिंसक शक्ति के बारे में सजग सावधान किया जाना है।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं चंपारण में किसानों की जागरूकता के कारण सवा सौ वर्षों से चली आने वाली अन्यायी तीन कठिन प्रथा 6-8 महीनों में अहिंसक आंदोलन से समाप्त हो गई। उससे पूर्व इस प्रथा के समक्ष बहुत से हिंसक विपल्व हुए थे साथियों, उनमें किसानों को कुचला डाला गया था।
0: बिल्कुल,
1: परंतु अहिंसक संघर्ष बहुत कम समय में सफल हुआ। यदि इस प्रकार किसानों के मात्र सभा जुलूसों और उकसाने के कार्यक्रमों के बजाय उनके दुखों से संबंधित मुद्दे लेकर उस संबंध में लोक जागृति की जाए अंजलि जी, तो अहिंसक शक्ति द्वारा किसान बड़े परिवर्तन करने की ताकत दिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर देखा जाए आर्थिक दृष्टि से तो कृषि सुधार के साथ साथ ही गो सेवा भी आ जाती है। गाय हमारे कृषि के संपूर्ण चक्र का एक बहुत आवश्यक अंग है दोस्तों।
0: जी जी,
1: वह हमें खेती करने की ऊर्जा का एक बड़ा साधन बेल देती है, कृषि को पुष्ट करने वाली खाद देती है और किसान को पुष्ट करने वाला दूध देती है।
0: बिल्कुल साथियों, गांधी जी के अहिंसक जागृति और संगठन द्वारा लोक शक्ति पैदा करके स्वराज की इमारत बनाने का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसकी इकाइयों के रूप में उन्होंने गांवों को लिया। वे तब तक स्वराज के लिए शहरों में सभा सम्मेलन करने वाले और प्रस्ताव रखने वाले लोगों को यह बात समझाते थकते नहीं थे कि हिंदुस्तान की अधिकांश आबादी तो गांवों में निवास करती है, गांवों की जागृति का कार्यक्रम सबसे पहले हाथ में लिया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: फिर वे यह भी मानते थे कि किसी भी संपूर्ण समाज की वास्तविक शक्ति को जगाना हो तो समाज के सबसे निर्बल अंग को मजबूत करने से ही जगाई जा सकती है। इसलिए अंत्योदय के इस विचार के पीछे सबसे दलित पीड़ित के प्रति करुणा और संपूर्ण समाज को मजबूत करने की व्यूह रचना एक साथ काम करती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए उन्होंने गांव के काम में खादी ग्रामोद्योग को पहला स्थान दिया। जो लोग अभी तक खादी का ग्रामोद्योग के कामों में लगे हुए थे और बड़े बड़े उद्योगों के आने से जिनकी रोजी रोटी छीन गई थी उनको वह भिक्षा के रूप में नहीं पर स्वाभिमान पूर्वक मेहनत के बदले में दी जाए तो समाज का यह सबसे दरिद्र वर्ग खड़ा हो जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: जिस प्रकार समग्र जंजीर की सबसे कमजोर या टूटी हुई कड़ी को कशिश सुधारने से पूरी जंजीर मजबूत होती है, उसी प्रकार समाज में सबसे पीछे रहने वाले लोगों की ताकत बढ़ती है तो पूरे समाज की ताकत बढ़ती है।
1: जी हाँ।
0: खादी ग्राम उद्योग और गो सेवा के आर्थिक कार्यक्रम श्रोता साथियों इस दृष्टि से ही रचनात्मक काम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन कार्यक्रमों खास तौर से खादी के काम में दूसरे भी स्पष्ट लाभ थे। इस तरफ गांधी जी ने शुरू से ध्यान दिया था। खादी का काम ऐसा था कि जिसमें अधिक से अधिक समय लेने वाला काम कताई तो जब चाहे शुरू किया जा सकता था और जब चाहे समेट कर दूसरी ओर रखा जा सकता था। वर्ष में 4-6 माह पूरे काम के बगैर रहने वाले किसान के लिए यह फुर्सत के समय काम

0: जैसी क्रिया थी। बलसात यह काम ऐसा था कशिश जिसे छोटे बड़े स्त्री पुरुष बूढ़े और अधिकांश बीमार लोग भी कर सकते हैं। बहुत कम पैसा लगने से ये साधन मिल सकते हैं और अधिकांशतः गांव के सुथार लुहार इन कामों की मरम्मत कर सकते थे।
1: बिल्कुल अंजनी जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही थी रचनात्मक कार्यक्रम को लेकर, अगले रविवार को हम फिर से जुड़ेंगे इसी प्रकरण के साथ में हमारे श्रोता साथियों से, लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में इसी प्रकरण से जुड़ी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
2: नमस्कार। तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: तू अणि माटी में जमी हूँ, अणि माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया बीज बोया, वो पसंद बहाई वो विश्रम करो। तो पसे बाप दादा ने जमीन आते मारो अधिकार किन नती। सूरी जन्म तक इस हकदार है, कानून ने आ बात मानी है। न पन्या पूटे एवं हक को ले सके, न रिवाज अन सच में बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक इन्हें पहचान।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

बागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, मैं विश्व के विधानों का वितान हूँ, अच्छे शासन संचालन का ताना बाना, मैं भारत का संविधान हूँ।
1: जी हाँ, संसार की अच्छाइयों को थामे मैं विस्तृत और महान हूँ, सुख शांति व अमन का पक्षधर मैं भारत का संविधान हूँ।
0: बिल्कुल, नीतिप्रद और कर्तव्य परायण मैं राष्ट्र नीति का अनुशासन हूँ, घायल हृदयों को सहलाता मैं भारत का संविधान हूँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम में हमारी बातचीत रही थी भारतीय संविधान के रोचक किस्सों के बारे में। इसी बीच आज रविवार ये विशेष कार्यक्रम में आज हम जानेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी को।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, किसी भी देश का राष्ट्र ध्वज केवल उसकी पहचान का प्रतीक नहीं होता है जागृति जी, बल्कि वह पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। हमारी आजादी की लड़ाई में भी लंबे समय तक एक सर्वमान्य ध्वज की कमी खली।
1: जी हाँ,
0: रियासतों के अपने अपने झंडे थे, लेकिन वे देश की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। इस ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, राष्ट्रीय ध्वज बनाने की पहल, इस ध्वज में किन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाए, इस पर होने वाली बहस से लेकर अंतिम रूप से तिरंगों को राष्ट्रीय ध्वज माने जाने का सफर अत्यंत दिलचस्प रहा। एक लंबे सफर के बाद वह ध्वज सामने आया जिसे हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहते हैं और जिसे देखते ही हाथ स्वतः सम्मान सलामी देने लगते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, प्राचीन काल से ही ध्वज सामूहिक एकजुटता का प्रतीक रहा है। यही कारण है कि दुनिया के हर देश का एक ध्वज होता है। वह ध्वज उसकी सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में लंबे समय तक किसी चीज की कमी खली तो वह था एक ऐसा ध्वज जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक भारत का प्रतिनिधित्व करता हो।
0: जी बिल्कुल,
1: जिससे भारत की जनता जुड़ाव महसूस करती हो। भारत को भी तिरंगे झंडे के रूप में अपना राष्ट्रीय ध्वज मिला, लेकिन शून्य से शुरुआत करके तिरंगे को अपनाने तक का सफर अत्यधिक दिलचस्प रहा।
0: जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं जागृति जी कि औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज, यानी कि श्रोता साथियों, सन 1857 में पहले स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी एक राष्ट्रीय ध्वज के बजाय देश की अलग अलग रियासतों के अपने अपने ध्वज हुआ करते थे। यह दिलचस्प बात है कि महादेश कहे जाने वाले भारत को उसका पहला ध्वज औपनिवेशिक शासन में साम्राज्यवादी अंग्रेजी शासन द्वारा दिया गया।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया जागृति जी, तब तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए अपना झंडा चुना। यह झंडा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में प्रस्तुत करता था। नीले रंग के इस ध्वज की बाई और ऊपरी यूनियन जैक बना था, जबकि दाहिने हिस्से के बीच में ब्रिटिश क्राउन में स्टार ऑफ इंडिया का चित्र अंकित था।
1: बिल्कुल अंजलि, और राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी स्वतंत्र देश की पहचान को स्थापित करने में राष्ट्रीय ध्वज एक अहम प्रतीक की भूमिका निभाता है।
0: जी जी,
1: सरोजिनी नायडू जो स्वतंत्रता मिलने से पहले ही भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करने लगी थी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज न होने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था कि विश्व युद्ध के बाद जिस दिन वार्सलीज में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस दिन में संयोगवश पेरिस में थी, हर तरफ खुशी थी, ओपेरा हाउस सभी राष्ट्रों के झंडों से सजा था।
0: जी बिल्कुल,
1: एक प्रसिद्ध अभिनेत्री रंगमंच पर आई, उसने फ्रांस के झंडे को अपने चारों ओर लपेट लिया, सभी दर्शक गण एक साथ खड़े हो गए और फ्रांस का राष्ट्रीय गीत दी मार्सलीज गाया गया। तब एक भारतीय ने अपनी आंखों में आंसू भर कर मुझसे पूछा कि हमारा झंडा कब बनेगा। मैंने उत्तर दिया कि शीघ्र ही, वह समय आने वाला है जब हमारा अपना झंडा भी होगा और राष्ट्र गीत भी होगा।
0: जी बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी, अब हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं कि प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज, यानी कि 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के प्रतिरोध में सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पारसी बागान चौराहे पर एक झंडा फहराया। यह एक चौकोर तिरंगा झंडा था जिसमें हरी, पीली और लाल नारंगी पट्टियां थी। सबसे ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल 8 प्रांतों के प्रतीक थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था। अनाधिकारिक रूप से यह पहला भारतीय ध्वज था। सन 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने क्रांतिकारियों के साथ पेरिस में लगभग इस तरह का झंडा फहराया। पहली बार केसरिया रंग का इस्तेमाल इसी झंडे में हुआ था। इसके बाद कुछ वर्षों तक भारत के

0: ध्वज पर कोई खास पहल नहीं हुई।
1: बिल्कुल, इसी के साथ अगर राष्ट्रीय ध्वज की पहल पिंगली वेंकैया की भूमिका को अगर बताएं,
0: जी हाँ,
1: तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे पिंगली वेंकैया भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने बोर युद्ध में एक सैनिक के रूप में लड़ाई लड़ी। 19 साल की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी से मिले। उनकी तमन्ना थी कि भारत का अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वह ज्यादातर खेती में लगे रहे, तो वह दूसरी तरफ उर्दू, संस्कृत और जापानी भाषा सीखने के लिए वे लाहौर में स्थित एंग्लो वैदिक स्कूल भी गए।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में बहुत अच्छी बातें चल रही है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी को लेकर, तो ये बातें निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय ध्वज की पहल पिंगली वेंकैया की भूमिका के बारे में, तो साथियों उन्होंने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया और ऐसे ध्वजों की एक पुस्तक प्रकाशित की जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो सकते थे।
1: बिल्कुल,
0: वर्ष 1918 और 21 के बीच वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के ध्वज की बात उठाते रहे। भारत आने के बाद वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मिले और उन्हें विभिन्न देशों के ध्वजों पर अपने प्रकाशन दिखाए और भारत की राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत के बारे में बात की। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा, पिंगली वेंकैया ने जो आंध्र नेशनल कॉलेज मछलीपट्टनम में कार्यरत है विभिन्न देशों के ध्वजों के बारे में पुस्तक प्रकाशित की है और भारत की राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी कई प्रारूप बनाए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने के लिए उनके द्वारा किए गए सतत प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ।
1: जी हाँ,
0: महात्मा गांधी ने उनसे झंडे तैयार करने के लिए कहा। वेंकैया द्वारा बनाए गए शुरुआती झंडे में लाल और हरा रंग ही था। बाद में महात्मा गांधी और लाल हरदयाल के सुझावों के बाद उसमें शांति के प्रतीक के रूप में सफेद रंग और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में चरखे के पहिए को जोड़ा गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति ने इस ध्वज को लाल रंग के स्थान पर केसरिया रंग स्थापित करने को कहा।
1: बिल्कुल,
0: और इसमें रंगों के स्थान भी परिवर्तित कर दिए गए। वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस ध्वज को अपना लिया।
1: बिल्कुल, इसी के साथ साथियों स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज अगर इस पर बात करें तो देश को आजादी मिलने से 30 दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत की राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में प्रस्ताव रखा गया।
0: जी हाँ,
1: अंजलि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा जिसमें गहरे केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की तीन आड़ी पट्टियां होंगी। सफेद पट्टी के केंद्र में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा।
0: जी हाँ,
1: चक्र की आकृति उस चक्र के समान होगी जो सारनाथ के अशोक स्तंभ पर अंकित है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात साधारणतः 2:3 होगा। पंडित नेहरू ने अपने भावनात्मक प्रस्ताव में कहा, इस महान राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए जो महान युद्ध किया मुझे उसकी सफलताएं और असफलताएं याद आती है।
0: जी बिल्कुल,
1: सभा के सदस्यों को याद होगा कि हम किस प्रकार इस झंडे को केवल गौरव और उत्साह ही नहीं वरन शरीर में एक स्फूर्ति और उत्तेजना भरने वाला मानते थे। जब हम पराजित और निरुत्साहित हो जाते थे तब इस झंडे का दर्शन आगे बढ़ने के लिए उत्साह दिलाता था।
0: जी जी,
1: मैं आपको ये झंडा भेंट करता हूँ।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें चरखे की जगह कैसे आया चक्र, तो श्रोता साथियों सन 1930 से ही देश की आजादी का आंदोलन जिस ध्वज के नीचे हो रहा था वह तिरंगा ही था, लेकिन इसके मध्य में चक्र के स्थान पर चरखा था। इसे क्यों बदला गया? पंडित नेहरू के मुताबिक चरखा जिस रूप में झंडे पर पहले था उसका चक्र एक ओर था और तकुआ दूसरी ओर।
1: जी हाँ,
0: यदि आप झंडे को दूसरी ओर से देखें तो चक्र इस ओर आ जाता था और तकुआ उस ओर। यह व्यावहारिक कठिनाई थी, इसलिए यथेष्ट विचार करने के बाद हमने यह सोचा किस महान चिन्ह को रखा जाए, किंतु थोड़ा परिवर्तन करना होगा। तब हमने चक्र को रखा और शेष भाग तकुए और माल को नहीं रखा।
1: इसी के साथ अगर बात करें तो अशोक चक्र ही क्यों? यानी कि अंजलि ये सवाल भी उचित ही है कि जब चरखे की जगह चक्र रखने का निर्णय लिया गया तो अशोक चक्र को ही अपनाने का ख्याल मन में क्यों आया?
0: जी बिल्कुल,
1: दरअसल साथियों उस समय अनेक चक्रों पर विचार हुआ परंतु अशोक की प्रमुख लाठ के सिरे पर बना चक्र चुना गया क्योंकि यह देश की प्राचीन सभ्यता का चिन्ह भी है।
0: जी बिल्कुल,
1: इस विषय में नेहरू जी ने कहा, हमने इसे इसीलिए अपनाया क्योंकि हम मानते हैं कि भारत किसी महान लक्ष्य को न अपनाता तो वह जीवित भी न रहता और न इस दीर्घ काल तक अपनी सभ्यता मूलक परंपराओं को जारी रख सकता था। यह अपनी परंपराओं को जारी रखने में दृढ़ न रहा बल्कि परिवर्तन करता रहा, हमेशा अच्छी बातों को ग्रहण करता रहा और कभी कभी बुरी बातें भी ग्रहण की परंतु अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति सच्चा रहा। हजारों वर्षों में हमारे ऊपर तमाम नए प्रभाव पड़े लेकिन हमने दूसरों को भी प्रभावित किया।
0: जी बिल्कुल, दोस्तों कहना चाहेंगे कि नेहरू जी ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र का यह सोचना मूर्खतापूर्ण है जागृति जी, कि वह शेष संसार को दे सकता है, उससे कुछ ले नहीं सकता। जब कोई राष्ट्र या कौम ऐसा सोचने लग जाती है, वह रूढ़ और प्रगतिहीन हो जाती है। भारत के इतिहास को देखने पर आपको पता चलेगा श्रोता साथियों कि भारत की अवनति का काल वह रहा होगा जब उसने अपने आप को सबसे पृथक कर दिया और बाहरी दुनिया की ओर देखना या उससे कुछ ग्रहण करना बंद कर दिया। और भारत का स्वर्ण काल वह था जबकि उसने सुदूर देशों में दूसरे को अपनाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, अपने राजदूत और गुप्तचर भेजे, अपने सौदागर और व्यापारिक प्रतिनिधि उन देशों को भेजे तथा दूसरे देशों के राजदूतों और गुप्तचरों का स्वागत किया।
1: जी हाँ, तो अंजलि, जैसे कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमारे श्रोता साथियों से बात की भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की कहानी, इसमें आज हमने जाना औपनिवेशिक भारत का पहला ध्वज, साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की अनुपस्थिति की पीड़ा, प्रतिरोध का पहला भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की पहल, पिंगली वेंकैया की भूमिका, साथ ही स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज, चरखे की जगह कैसे आया चक्र और अशोक चक्र ही क्यों। अगले रविवार कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं अशोक यानी अंतर्राष्ट्रीयता तिरंगा यानी स्वाधीनता के बारे में, गांधी जी की नाराजगी के बारे में, कांग्रेस का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज न बने, इसी के साथ राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में, और साथ में हम जानेंगे भय और हिंसा का प्रतीक नहीं है भारत का राष्ट्रीय ध्वज।
0: जी बिल्कुल साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
7: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
0: कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं नए और पारंपरिक व्यंजनों की विधि को लेकर। तो आज भी हम कार्यक्रम के माध्यम से नए व्यंजनों की विधि के बारे में आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि दोस्तों मैंने गीत से पहले आपको बताया था कि आज भी हम नए व्यंजनों की विधि को लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रही हैं प्रेरणा जी, जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सब्जियों को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, जिससे उनका पोषण भी बना रहे और साथ ही स्वाद में भी बहुत अच्छी लगे, ताकि बच्चे और घर परिवार के सभी सदस्य हरी सब्जियों को देखकर जो मुंह बना लेते हैं वो नहीं बनाए। तो आइए सुनते हैं प्रेरणा जी के माध्यम से व्यंजनों की विधि के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रेरणा और मैं बांसवाड़ा क्षेत्र में रहती हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मैम आप हमारे वागड़ क्षेत्र में ही रहती हैं और आप एक गृहिणी भी हैं और एक माँ भी हैं, इसी के साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप ये चीज़ बहुत ही बखूबी तरीके से निभा रही हैं। आप अपने घर पर सभी के पोषण का भी ध्यान रखती हैं, तो आज कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सी रेसिपी हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगी, जिससे उनके खाने का पोषण भी बना रहे और साथ ही बाजार की जो चीजें हैं जिन्हें हमें बार बार खाने का मन करता है वो भी ना करे, उसका स्वाद हमें घर पर ही मिल जाए।
1: बहुत सही बात कही आपने अंजलि जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात करते हैं अपने खाने की, तो मेरे घर में जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, कई बार कुछ सब्जियां होती है जो खाना पसंद नहीं करते।
0: बिल्कुल,
1: तो उन सब्जियों को हमें इस तरीके से पकाना चाहिए कि वो उनका रुचि जागृत हो उसको खाने के लिए। तो इसीलिए मैं जब बनाती हूँ तुरई, जिसे हम गिलकी भी बोलते हैं, उस सब्जी को मैं बनाती हूँ मूंगफली के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: ये मेरी माता जी जो है उन्होंने सिखाया था मुझे, क्योंकि मैं सब्जी खाती नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से बनाना सिखाया।
0: अच्छा, बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि मूंगफली को तुरई के साथ बनाकर खाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब कार्यक्रम में आप हमें ये बताइए कि इसे बनाने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए और साथ ही इसे बनाने की विधि क्या है।
1: जी बिल्कुल, जब हम इसे बनाते हैं बहुत ही सादा तरीके से बनाना होता है, इसमें कोई मसाला कुछ नहीं लगता। आप मूंगफली को सेक लीजिए, सेक के उसे दरदरा पीस के एक साइड रख दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: फिर आप तुरई को छील के उसे काट लीजिए छोटा छोटा, और फिर कढ़ाई के अंदर आप तेल डालिए, उसमें जीरे का एक तड़का मार दीजिए। उसके बाद में जो आपकी काटी हुई तुरई है वो उसमें डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, और फिर इस नमक तेल में उस तुरई को पकने दीजिए, क्योंकि तुरई पानी छोड़ती है, वो अपने ही पानी से उसको पक जाएगी। जो पूरी पक जाती है तब उसके अंदर आप थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी डाल दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: आपके स्वाद अनुसार। और फिर जो आपकी सेकी हुई दरदरी पिसी हुई मूंगफली है, जितनी आपकी तुरई कटी हुई थी उतनी वो मूंगफली का सामग्री होती है, वो उसमें डाल के जल्दी जल्दी चला दीजिए, वो पूरा मिक्स हो जाएगा और बस आपकी सब्जी बन गई।
0: बिल्कुल, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाती है, जो हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। यही मैं जानना चाहूंगी कि इस सब्जी को खाने से हमारे बच्चों का पोषण किस तरीके से बना रहेगा।
1: जैसा कि हम जानते हैं कि तुरई में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और तुरई स्वाद में जब हम ऐसे ही बनाते हैं तो बच्चे उसे मुंह से निकाल देते हैं, खाते ही नहीं है। जब उसे हम मूंगफली के साथ डालते हैं तो बच्चे उसे बहुत स्वाद के साथ खाते हैं, क्योंकि उसमें तुरई का कोई स्वाद नहीं आता, सिर्फ मूंगफली का स्वाद आता है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों में पोषण की कमी को बहुत ज्यादा देखा जाता है, ऐसे में माताएं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करके अगर सब्जियां बनाएंगी तो बच्चे उसे चाव से खाएंगे और बच्चों का घर पर पोषण बना रहेगा। तो जैसा कि प्रेरणा जी आपसे हमारी कार्यक्रम में बातें हमारे व्यंजनों की विधि को लेकर चल ही रही है, इसी बीच हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को गीत संगीत सुनवाते हैं। तो आज भी हम कार्यक्रम के माध्यम से आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत हमारे श्रोता साथियों को सुनवाना चाहेंगे।
1: तो जहाँ तक गीत की बात है अंजलि जी, मुझे एक गीत बहुत पसंद है, मुझे राजस्थानी लोकगीतों का बहुत शौक है, तो एक गीत है प्यारी प्यारी मूमल, आप वो गीत जरूर सुनाइएगा श्रोता जी को।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं प्रेरणा जी की पसंद के इस राजस्थानी गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम में गीत से पहले हमारी प्रेरणा जैसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि किस तरीके से हमें गिलकी को मूंगफली के साथ बनाना है और उसके क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, यही प्रेरणा जी एक और कौन सी व्यंजन विधि के बारे में आप हमारे श्रोता साथियों को बताना चाहेंगी?
1: एक जो मैं सब्जी बनाती हूँ जो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है वो है लौकी और पत्ता गोभी को एक साथ बनाना।
0: बिल्कुल,
1: तो इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि लौकी को घिस लेती हूँ, जैसे हम गाजर को घिसते हैं जब हलवा बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो लौकी का पता नहीं चलता कि लौकी है उसमें।
0: बिल्कुल,
1: और पत्ता गोभी को तो हम छोटा छोटा काटते हैं तो उसी प्रकार से घिसने जैसा ही उसका टेक्सचर हो जाता है। और दोनों सब्जियों को काटने और घिसने के बाद में साइड में रख के मैं लहसुन अदरक का, प्याज का और टमाटर का एक झोंक लगाती हूँ, उसको अच्छे से पकने देती हूँ और फिर ये दोनों चीज़ों को, सब्जियों को कटी को, उसके अंदर डालती हूँ। और जब ये सारा पक जाता है नमक डाल करके, फिर ऊपर से जो मसाले डालने होते हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची और जीरा पाउडर, ये सब डाल करके पका करके ये सब्जी आपकी तैयार हो जाती है।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रेरणा जी आपने बताया कि पत्ता गोभी के साथ हम लौकी भी बना सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पत्ता गोभी के साथ सिर्फ आलू ही डलते हैं और वो उसे ही मिक्स करके बनाते हैं और बहुत से लोगों को आलू से एलर्जी होती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में हम केवल पत्ता गोभी न बनाकर उसमें लौकी को, जैसा कि आपने बताया कि गाजर की तरह किस कर भी बना सकते हैं। और हम देखते हैं कि पत्ता गोभी और लौकी दोनों ही हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है?
1: जैसे हम जानते हैं कि इसमें भी आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो भी आप सब्जी काटते हैं वो काटने के बाद अगर काली पड़ जाती है तो इसका अर्थ होता है कि उसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। तो हम लौकी में भी आयरन जानते हैं और पत्ता गोभी में तो बहुत सारे विटामिन होते ही है। तो इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो हमें दोनों सब्जियों का पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है।
0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा। तो जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी तरीके से दोनों व्यंजनों की विधि के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें किस तरीके से अपने परंपरागत जो खान पान है उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए?
1: मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी दादा दादी लोग, नानी लोग खाना बनाते थे वो बहुत ही पौष्टिक हुआ करता था और उस समय हम अपने ही घर की लगी हुई सब्जियां बनाते थे, अपने ही आंगन में लगी हुई सब्जियां बनाते थे, तो उस कारण से उसका पोषण और अधिक बढ़ जाता था।
0: बिल्कुल,
1: और जब हम उन्हें बनाते थे बहुत ही सादे सिंपल तरीके से बनाया जाता था, ज्यादा मसाला नहीं, ज्यादा तेल नहीं, लेकिन बहुत सादे तरीके से। अगर हम राजस्थान का खाना देखें तो जो भी सब्जियां यहाँ उपलब्ध है वो सारी सब्जियों को हम संपूर्ण रीति से खाते हैं, उन सब्जियों का अचार भी बनाते हैं और साथ ही साथ उन सब्जियों को हम पराठे में या रोटी में मिक्स करके भी
0: खा लेते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि घर पर बना खाना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है और हमारे आसपास कई ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं जो औषधीय पोषण के तौर पर हमारे थाली में होनी चाहिए। तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ बात करके आप लोगों से और आगे मिलते रहेंगे।
0: साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में प्रेरणा जी जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें बताया तुरई जिसे हम गिलकी बोलते हैं उसके साथ मूंगफली हम कैसे मिक्स करके बना सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी और लौकी की सब्जी हम कैसे बनाएं। तो श्रोता साथियों, ये मिश्रित सब्जी पोषण का खजाना है। लौकी और गिलकी शरीर को हल्का रखने, पाचन सुधारने और पानी की कमी को पूरी करने में मदद करते हैं। वहीं पत्ता गोभी में विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक है। वहीं मूंगफली इस सब्जी में प्रोटीन, स्वास्थ्य वसा और ऊर्जा का अच्छा स्रोत जोड़ती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि रंग बिरंगी सब्जियों का मेल केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि शरीर को संतुलित पोषण देकर स्वस्थ जीवन की नींव को भी मजबूत करता है। तो आप सभी आज से ही एक बात ध्यान में रखें कि रसोई में जितनी विविधताएं होंगी थाली में उतना ही पोषण होगा और स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। तो ये थी हमारी कार्यक्रम की व्यंजनों की विधि। आशा करती हूँ कि ये आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है व्यंजनों की विधि को लेकर, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, निपोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
6: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
5: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
6: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
5: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
6: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
5: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
4: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
6: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
7: होवे आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नो संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित श्रोताओं यह तो थी हमारी आज की सभा हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर हमारा पता है वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर हमारा फोन नंबर है 9460051234 एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए हमारा नंबर है 9460051234 तो श्रोता हूँ दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में तब तक के लिए नमस्कार।